दोस्तों, एडल्टहुड का भी एक अजीब सा वर्जन होता है। शाम शांता लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी एक वक्त था जब दोस्त रोज मिल जाते थे, लेकिन अब प्लान्स कैलेंडर पे होते हैं और सिटीज के नाम फ्रेंडशिप्स के बीच में आ जाते हैं। लेकिन फिर अचानक से एक मैसेज आता है, आई एम इन टाउन फॉर अ फ्यू आवर्स, कैन वी मीट। और फिर क्या, पूरी ट्रिप के बीच में एक छोटा सा वक्त ऐसा निकलता है, चाहे फिर वो क्विक कॉफी हो, कभी लेट नाइट फ्राइज हो, कभी बस एक छोटा सा ड्राइव। लेकिन मिलते ही ना दोस्त की वो पहली लाइन होती है कि यार तू तो बिल्कुल नहीं बदला, और नेक्स्ट 2 घंटे में पूरा पुराना वर्जन ऑफ योरसेल्फ वापस आ जाता है। और मजे की बात तो ये होती है कि इतने लंबे गैप के बाद भी ना कॉन्वर्जेशंस वहीं से शुरू होते हैं जहां लास्ट टाइम छोड़ी थी। और शायद इसीलिए पुराने दोस्त स्पेशल होते हैं, उनके साथ एफर्ट नहीं लगता, बस थोड़ा वक्त मिलना चाहिए। तो दोस्तों, अगर इस वीक आप भी किसी पुराने दोस्त से मिलने वाले हो तो थोड़ा सा वक्त जरूर निकालना वही पुरानी यादों के लिए, क्योंकि कभी कभी एक क्विक मील में भी फुल थेरेपी लगती है। और मुझे जरूर बताना कि आपके वो पुराने दोस्त के लिए कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहोगे। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि मेरे उस पुराने दोस्त के लिए जिससे मैं मिलूंगी, उसके लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मेरे को फॉर श्योर पता होना चाहिए ना कि तू सच बोल रही है या मैं ऐसे कंफ्यूज ना हो जाऊं. व्हाट डज दैट मीन? दैट इज टॉक्सिक. बट गर्लफ्रेंड्स विल डिफेंड दैट सेइंग टॉक्सिक थोड़ी है, ही इज जस्ट वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट मी. या फिर जब आप एक ग्रुप एक्सकर्शन पर जा रहे हो जिसपे लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं एंड ऑल ऑफ देम आर योर बचपन के दोस्त, बट यू स्टिल हैव टू आस्क योर बॉयफ्रेंड, क्योंकि हो सकता है दैट उसे पसंद ना आए दैट आप छुट्टी पर जा रहे हो विद सो मेनी मिक्स्ड ग्रुप ऑफ पीपल. दैट इज ऑल्सो टॉक्सिक. बट वॉट आई लव इज दैट अ लॉट ऑफ पीपल विल से कि ये टॉक्सिक थोड़ी है, ही इज जस्ट पजेसिव. वो बस पता करना चाहता है कि मैं ठीक हूँ, सेफ हूँ. यू नो हाउ द वर्ल्ड इज राइट नाउ. सिस, गेट अ लाइफ एंड अ थेरेपिस्ट, बिकॉज वॉट यू लव इज सेल्फ सैबोटेज. अगर आपकी जिंदगी में ऐसे टॉक्सिक लोग हैं, एंड आई कीप सेइंग, जिनके रेड फ्लैग्स पकड़ पकड़ के आप अपना लाल शादी का लहंगा बनाने वाले हो, इसे करने से पहले एक बार फोन पे बात कर ले प्लीज प्लीज प्लीज. जस्ट मिर्ची इसका बना उसका बना सबका बना बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा
1: मिर्ची मुर्गा. हेलो हेलो, मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: हाँ जी बोल रहा हूँ. मनोज,
1: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ. ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
2: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है. मैं तो सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं.
1: एक महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान.
2: कितने दिन तक?
1: ये एक महीने तक कम से कम.
2: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
1: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं. अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात अपने तक ही रखना.
2: बोलो.
1: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है.
2: कौन सा?
1: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं.
2: कच्चा? अच्छा.
1: हाँ, तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ. बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे. कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
2: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ,
1: वो पक्का हो जाएगा. मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की.
2: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
1: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना यार. उसमें काम करना. कुकर है आपके घर?
2: कुकर? हाँ कुकर तो है.
1: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो. 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी.
2: अच्छा.
1: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
2: सोडा,
1: हाँ खाने वाला सोडा. नहीं नहीं नहीं, लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना. खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा.
2: लहसुन? यार पेट्रोल बना रहा है या वो खाना बना रहा है?
1: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा.
2: मतलब उसको पकाऊं?
1: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप. 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको. इससे ज्यादा और क्या करें यार.
2: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा रिस्क? कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
1: यह काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना, पकाना नहीं है.
2: नहीं नहीं, कोई मैं रिस्क नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे.
1: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से.
2: चल जाएगी?
1: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी. कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है.
2: अबे कौन बोल रहा तू?
1: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था. उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है. घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो. तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था.
2: अरे यार जरा ये भी बता दो कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
3: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2. Inefficient,
4: very complex,
5: clumsy or
6: confusion ही confusion.
3: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
7: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन. Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
3: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islington.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: ऑफिस में अपनी इंटर्न के साथ मेकिंग आउट करते हुए पकड़े गए आप, आपको ऑफिस ने निकाल दिया 2 हफ्तों के लिए और आपने सबको कहा आपका पेट खराब है, दैट्स व्हाई यू टुक अ छुट्टी. ये झूठ पकड़ा जाएगा तो कैसा लगेगा आपकी बीवी को?
2: द सीक्रेट बॉक्स.
1: वैसे तो आप बदतमीज इंसान हो, लेकिन बिकॉज आई एम क्वाइट नॉन जजमेंटल, आपके पास कोई कन्फेशन है तो फील फ्री टू टॉक अबाउट इट राइट नाउ. मेरे साथ है मेरे मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर.
3: Hi Roshi, how are you?
1: I'm very good, Mystery Girl. आप ऐसे क्यों साउंड कर रहे हैं जैसे
3: आप? मेरी आवाज ही ऐसी है, मैं क्या करूँ.
1: आपकी आवाज जैसी है, क्या आपका चरित्र भी उसी तरह का है?
3: चरित्र तो ठीक है, बस थोड़ा जबान का इशू है आवाज के साथ ना, दोनों चीजें वहीं से निकल रही
1: हैं. क्या आप मुझे कहने की कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जुबान बहुत केपेबल है बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें करने की?
3: मुझे लगता है मेरा दिमाग में, जब मैं ऐसी सिचुएशन में कहीं फंस जाता हूँ तो मेरा बहुत तेज दिमाग चलता है.
1: दिमाग तेज चलता है, इसमें जुबान की हमने कोई बात नहीं करी है. जुबान के साथ ओके, आप पहेलियां बुझाना बंद करेंगे. कन्फेशन बॉक्स है, नॉट इंक्रीज योर IQ. तो आप मुझे बता दो ना कि करा क्या हमने जिंदगी में.
3: यार एक्चुअली आई वाज इन द कार विद अ गर्ल.
1: राइट.
3: चीजें मतलब थोड़ा हम लॉन्ग ड्राइव पे निकले थे, थोड़े देर घूमने उमने के बाद थिंग्स गॉट थोड़ा कोजी. देन वी वर लाइक इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग थिंग्स, नॉट डूइंग एग्जैक्ट लाइक मेकिंग आउट.
1: मैं समझ गई.
3: वो गलती से ना मेरे मुंह से ना किसी और का नाम निकल गया लड़की का, एंड शी रियलाइज्ड इट लाइक एकदम से.
1: ओके.
3: एट दैट टाइम वी वर अ बिट इंटॉक्सिकेटेड, सो आई वॉज लाइक की यार कम पिया करना यार, कम नशे किया करते. कुछ नाम नहीं समझ में आ रहा, पता नहीं किस किसका नाम सुनती रहती है. आई वॉज स्पीकिंग योर नेम एंड इवन देन आई वॉज नॉट श्योर अबाउट द नेम, सो आई सेड बेबी.
1: आपको शर्म नहीं आती है अभी कन्फेस करते हुए?
3: फिर उसको लड़की को दोबारा कॉल नहीं किया मेरी नंबर,
1: क्योंकि आपको उसका नाम नहीं पता था. आपके साथ गाड़ी में जो हुआ वो कन्फेशन अपनी तरफ है. द फैक्ट दैट उसके साथ बेहद नशे में मेकआउट करने के बाद भी आपको उसका नाम कम बेहद नशे में भी आपको उसका नाम नहीं याद है?
3: यार मुझे आज तक नहीं याद है यार.
1: यू जस्ट कॉल्ड हर बेबी एंड गॉट ओवर दैट. ब्रो द नेक्स्ट टाइम मुझे कोई बेबी कह रहा है ना भाई, मैं उसे पूछने वाली हूँ बेबी बेबी तो ठीक है, मेरा नाम बता क्या है, मेरे बाप का नाम बता क्या है, मेरा पैन कार्ड का नंबर बता क्या है, देन वी विल मेक आउट. बट आई एम गोइंग टू रोशिफाई यू, ठीक है? क्योंकि नॉट बिकॉज आप एक निहायत ही गलीच इंसान नहीं हो, बट बिकॉज आप इतने ऑनेस्ट हो. ठीक है?
3: यू
1: लाइक जी
4: यू बीन roshified.
1: No, but honestly, it takes great courage to talk about this in public. Besharam, behude. It was very
3: nice.
1: नाम आपको पता कहाँ है और आपका नाम मैं याद रखने नहीं वाली हूँ. ऑन दैट नोट, अगर आपकी भी जिंदगी में आपने ऐसे ही इतने गलीच काम किया ना, व्हाई डोंट यू हिट मी अप, बिकॉज आई एम रियली नॉन जजमेंटल फॉर मोस्ट पार्ट. मंडे से लेके थर्सडे तक तो पक्का ही. मेरा नाम है मिर्ची, रोशी नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो फाइंड मी ऑन द ग्राम या फेसबुक, पर व्हाटएवर यू डू, कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्केटवे आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यु आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिरजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 7323578200। जय देव।
0: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com। इट्स 8 o'clock। मिर्ची टाइम चेक ब्रॉट यू बाय आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, ज्वेलरी में सिर्फ एक ही नाम, आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। It's 8:30 PM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry में सिर्फ एक ही नाम. RK Jewels. Best quality, best price.
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
2: अब मिर्ची खा.
4: Radio Mirchi. It's hot.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: कई बार मैं सोचती हूँ what is the nicest thing that my ex did for me, और मेरे जहन में उसका आंसर एक ही आता है. He made sure that I wasn't with him. क्योंकि अगर मैं उसके साथ होती तो आज मैं जिंदा नहीं होती, for sure. Toxicity की प्रतिमूर्ति, उसने तो टॉक्सिक होना एक ओलंपिक स्पोर्ट बना लिया था. वो तो मैं टाइम पर बच गई, नहीं तो आज मैं आपसे बात नहीं कर रही होती. लेकिन अगर मेरी तरह आपको भी यही लगता है कि आपके एक्स ने आप पर ये एहसान किया कि वो आपकी जिंदगी से कट लिया एक अच्छे टेलर की तरह, then why don't you hit me up? We'll compare notes. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के स्पेलिंग है ROCHIE. And talking of Olympic sports, dating guys who are major red flags seems to be my personal favorite Olympic sport. On that note, while you find me on your socials, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot. अच्छा.

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Gabana. Burga, burga. La
1: birba la burga. Mirci, burga. Hello? Hello?
2: Sir, very good evening, man. Thanks a lot.
1: हाँ बोलिए
2: सर. आई एम सो सॉरी सर, बट सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
1: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं, क्या
2: बात है सर. आई एम सो सॉरी, पूरा बताइए
1: क्या कह रहे हो भैया, कहाँ क्या हो गया?
2: बता रहा सर, आपने उसमें से अभी तो कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
1: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
2: आई एम सो सॉरी सर, ऐसी कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
1: नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
2: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
1: नहीं, मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
2: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
1: पागल पागल है क्या?
2: अब तो देने पड़ेंगे सर.
1: हेलो.
2: अब तो फंस गए देने पड़ेंगे.
1: कौन बोल रहा है? विपिन?
2: नहीं सर, अब तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
1: पागल के दिमाग खराब है क्या? पैसे देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे पैसे.
2: अब तो फंस गए सर.
1: हेलो
3: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ. सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है.
1: उसके पैसों को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
3: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे. आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
1: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
3: हाँ जी. अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर. मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
5: ओह नो!
4: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स. बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
6: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
4: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
7: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
4: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
8: एक ही होता है.
4: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची. मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yeah.

0: क्या होगा कालिया?
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आई डोंट नो ये किसे सुनने की ज़रूरत है, लेकिन शायद आपको, बिकॉज अगर इस वक्त में आप मुझे सुन रहे हो, देन आई हैव जस्ट वन थिंग टू से टू यू. समटाइम्स दुनिया में सबसे स्ट्रांग चीज़ जो आप कर सकते हो वो है इसे जाने दीजिए, लेट इट गो. अगर आपके दिल को ये दर्द पहुंचा रहा है, अगर ये आपके लिए कन्फ्यूजिंग है, अगर ये येस और नो के बीच में कहीं बैठा हुआ मे भी है, देन शायद अपने दिल की वेलबींग के लिए आपको इस चीज़ को जाने देना होगा. ये एक रिश्ता हो सकता है, एक इंसान हो सकता है, आपका प्यार हो सकता है फॉर समबडी. बट इफ इट इज़ हर्टिंग यू एवरी सिंगल डे, देन इट इज़ टाइम टू लेट इट गो. और अगर ये लेट गो करना आपके लिए मुश्किल है ना, आई अंडरस्टैंड द फीलिंग, क्योंकि अक्सर जिंदगी में मैंने इसे किया है और ये प्रैक्टिस बहुत मुश्किल है. हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम मिर्ची रोशी है, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. शायद अगर आपको उस हाथ की ज़रूरत है जिसे पकड़ के आप लेट गो कर सकते हो, माइंड माइट बी द हैंड दैट यू आर लुकिंग फॉर. सो फाइंड मी ऑन योर सोशल्स एंड व्हाइल यू डू दैट, कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: ब्रो अब तो तू नस काट ले, ठीक है? अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको ये कहा आफ्टर यू आस्क हर कि हाँ इज एवरीथिंग ओके एंड शी टर्न्स अराउंड एंड सेज हाँ इट्स ओके, मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी, इट्स फाइन, और आपने मान लिया कि इट इज फाइन और आपने मान लिया कि उसे इसके बारे में बात नहीं करनी है, तो बेटर है कि आप नस काट लो, क्योंकि इट विल बी अ लॉट इजियर. उसके बाद जो आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ करेगी ओवर अ पीरियड ऑफ 5-6 दिन, उस तरह का टॉर्चर आप झेल नहीं पाओगे. तो पहले ही नस काट लो एडवांस में. जब आपकी गर्लफ्रेंड कह रही है इट्स ओके, तो सुनो ढंग से वो क्या कह रही है. इट इज नॉट ओके, तू एक नंबर का गधा है, तुझे एक चीज समझ में नहीं आई, इतने साल तुझे पीट पीट के समझाने की कोशिश की, दिमाग तेरा कहां घास चढ़ने गया था, स्कूल में फेलियर, रिलेशनशिप में फेलियर, नस काट लो आप. Please, I think it's a great idea. Go for it. I am not suggesting that. अपने आप self harm मत करना and don't blame it on me. I'm just kidding. But if you have been through a fight, जहाँ आपने अपने girlfriend की it's okay, I'm fine, को it's okay, I'm fine मान लिया था, I really want to know आप किस तरह के बेवकूफ हो. And to share that story with me, hit me up on Insta या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की spelling है ROCHIE. So go ahead and do whatever you have to do, just don't cut your nuts in real time. And कहीं मत जाना, जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: Mirchi.
1: Escabana, pues cabana, sacabana. ¡Rambala! Burga, burga. La vieja la burga.
0: Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेन करी है?
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ।
2: हाँ जी, हेलो।
3: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है? सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाते हैं, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें।
3: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 3rd K 35/14A फर्स्ट फ्लोर नगर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सिक्योरिटी की वजह से आपका सनशाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
2: सिक्योरिटी के लिए सनशाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
2: मेरा सनशाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला है।
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
3: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
2: बी पॉजिटिव, 2 दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा। ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता
3: तो
2: दो।
3: तो मैं आपको, अरे मैडम,
2: सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल।
3: सुमन जी, आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
2: क्या
3: नहीं तो मैं, अरे मैडम, आप मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है। आप अगर मेरा मतलब है, अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा।
4: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं।
3: दोबारा कॉल करेंगे, आप क्या वक्त लिया? आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: It's 10 o'clock. Mirchi time check.
6: Brought to you by RK Jewels. RK Jewels, New Jersey's favorite jewelers. RK Jewels, best quality, best price.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: ऑफिस में अपनी इंटर्न के साथ मेकिंग आउट करते हुए पकड़े गए आप, आपको ऑफिस ने निकाल दिया 2 हफ्तों के लिए और आपने सबको कहा आपका पेट खराब है, दैट्स व्हाई यू टुक अ छुट्टी. ये झूठ पकड़ा जाएगा तो कैसा लगेगा आपकी बीवी को?
2: द सीक्रेट बॉक्स.
1: वैसे तो आप बदतमीज इंसान हो, लेकिन बिकॉज आई एम क्वाइट नॉन जजमेंटल, आपके पास कोई कन्फेशन है तो फील फ्री टू टॉक अबाउट इट राइट नाउ. मेरे साथ है मेरे मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर.
3: Hi Roshi, how are you?
1: I'm very good, Mr. Golab. ऐसे क्यों साउंड कर रहे हैं जैसे आप?
3: मेरी आवाज ही ऐसी है, मैं क्या करूँ.
1: आपकी आवाज जैसी है कि आपका चरित्र भी उसी तरह का है.
3: चरित्र तो ठीक है, बस थोड़ा जबान का इशू है आवाज के साथ ना, दोनों चीजें वहीं से निकल रही हैं.
1: क्या आप मुझे कहने की कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जुबान बहुत कैपेबल है बहुत सारी अच्छी चीजें करने की?
3: मुझे लगता है मेरा दिमाग में, जब मैं ऐसी सिचुएशन में कहीं फंस जाता हूँ तो मेरा बहुत तेज दिमाग चलता है.
1: दिमाग तेज चलता है, इसमें जुबान की हमने कोई बात नहीं करी है. जुबान के साथ ओके. आप पहेलियां बुझाना बंद करेंगे, कन्फेशन बॉक्स है, नॉट इंक्रीज योर IQ. तो आप मुझे बता दो ना कि करा क्या हमने जिंदगी में.
3: यार एक्चुअली आई वाज इन द कार विद अ गर्ल.
1: राइट.
3: चीजें मतलब थोड़ा हम लॉन्ग ड्राइव पे निकले थे, थोड़ा देर घूमने उमने के बाद थिंग्स गॉट थोड़ा कोजी. देन वी वर लाइक इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग थिंग्स, नॉट डूइंग एग्जैक्टली लाइक मेकिंग आउट.
1: मैं समझ गई.
3: वो गलती से ना मेरे मुंह से ना किसी और का नाम निकल गया लड़की का, एंड शी रियलाइज्ड इट लाइक एकदम से.
1: ओके.
3: एट दैट टाइम वी वर अ बिट इंटॉक्सिकेटेड, सो आई वॉज लाइक की यार कम पिया करना है यार, कम नशे किया करते. मुझे कुछ नाम नहीं समझ में आ रहा, पता नहीं किस किस का नाम सीखती रहती है. बट आई वॉज स्पीकिंग योर नेम, एंड इवन देन आई वॉज नॉट श्योर अबाउट द नेम, सो आई सेड बेबी.
1: आपको शर्म नहीं आती है अभी कन्फेस करते हुए?
3: फिर उसको लड़की को दोबारा कॉल नहीं किया.

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
2: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: तेरा क्या होगा कालिया?
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आप खुद में ही बहुत मस्त इंसान है, आपको किसी और की जरूरत नहीं है. हाँ, अगर जिंदगी में कोई ऐड हो जाए देन यू विल स्पिल योर लव इनटू देयर लाइफ एज वेल, लेकिन आपको ऐसे किसी के पीछे चेज करने की जरूरत नहीं है. यू आर समबडी हु अट्रैक्ट्स, डज नॉट चेज. अगर ये आपकी पर्सनालिटी टाइप है देन लेट मी गेस दैट आपकी फेवरेट ड्रिंक या बेवरेज ऑफ चॉइस होगी ब्लैक कॉफी, बिकॉज मेरी मम्मी की ये फेवरेट ड्रिंक है. एंड व्हाट इट सेज अबाउट यू एज अ पर्सनालिटी टाइप इज कि आप एक नो नॉनसेंस, बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही लाइक यू नो सेल्फ कॉन्शियस, सेल्फ अवेयर इंसान हो. यू आर समबडी हुज फिटनेस ओरिएंटेड, आप बहुत ही एम्पावर्ड इंडिविजुअल हो. जिंदगी में आपने एक फेयर अमाउंट ऑफ स्ट्रगल देखा है और उस स्ट्रगल को देखने के बाद यू हैव इवॉल्व्ड योरसेल्फ टू अ प्लेस जहां आप अपने लिए बिल्कुल संतुष्ट और तृप्त हैं. और अगर आपकी जिंदगी में प्यार आ जाए तो यू विल ट्रीट इट लाइक अ बोनस प्रेजेंट. अगर ये सब आपकी पर्सनालिटी टाइप को फिट कर रहा है एंड सरप्राइज सरप्राइज यू रियली लव ब्लैक कॉफी, देन अपने बारे में व्हाई डोंट यू शेयर मोर डिटेल्स. हो सकता है हम

0: Milci.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La viva la burga. Milci, burga.
2: हेलो
3: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
3: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
2: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
3: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
2: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
3: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात अपने तक ही रखना।
2: बोलो।
3: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
2: कौन सा?
3: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
2: कच्चा? अच्छा।
3: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
2: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ,
3: वो पक्का हो जाएगा। मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
2: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
3: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
2: कुकर तो है।
3: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। कुकर में जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
2: अच्छा।
3: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
2: सोडा,
3: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
2: लहसुन? यार पेट्रोल बना रहा है या वो खाना बना रहा है?
3: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
2: मतलब उसको पकाऊं?
3: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
2: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा रिस्क? कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
3: यह काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना है, पकाना नहीं है।
2: नहीं नहीं कोई मैं सर्विस नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
3: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
2: चल जाएगी?
3: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
2: अबे कौन बोल रहा तू?
3: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
2: अरे यार ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। लिस्नर में बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा, ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

उदास सा गाना जिसमें अमिताभ बच्चन साहब उदास से मुंह फुलाए से घूमते रहते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और जैसा कि मैं अक्सर कहती हूँ, उदासी में भी एक अलग खूबसूरती होती है। अगला जो गाना हम सुनने वाले हैं उसमें भी अमिताभ बच्चन साहब ऐसे मुंह फुलाए घूमते रहते हैं। त्रिशूल फिल्म का गाना। वैसे आपको पता है ये जो त्रिशूल टाइटल है, ये यश चोपड़ा साहब ने राइटर सलीम जावेद को दिया था कि भाई ये टाइटल है, इस पे फिल्म लिख दो। और जब इन्होंने फिल्म लिखी तो यश चोपड़ा साहब को समझ नहीं आया कि ये स्टोरी टाइटल से कैसे रेलेवेंट है। तो उन्होंने समझाया कि इस फिल्म के जो मेन कैरेक्टर्स हैं, एक बाप, उसका एक जायज बेटा, एक नाजायज बेटा। वैसे अगर आप सोचे ना तो बहुत मायनों में त्रिशूल सिग्निफाइज द स्टोरी ऑफ द फिल्म, कि कैसे अमिताभ बच्चन एक वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन बनके अपने ही बाप से बदला लेते हैं, कैसे अपनों के दिए घाव एक त्रिशूल के जैसे उनके सीने में उतर जाते हैं, कैसे पास्ट प्रेजेंट को अफेक्ट करता है। सो दैट वे बहुत सारी सिग्निफिकेंस है। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बाना, उसका बाना, सबका बाना, क्या बाना? मुर्गा मुर्गा नवीद वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो हेलो
4: सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ।
3: हाँ बोलिए
4: सर। आई एम सो सॉरी सर, बट सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
3: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं क्या बात है
4: सर, आई एम सो सॉरी, पूरा बताइए
3: क्या करो भैया, कहाँ
4: सर आपने उसमें से अभी तक कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
3: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
4: आई एम सो सॉरी सर, ऐसे कभी कभी हो जाता है सर। सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
3: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया। हेलो
4: आई एम सो सॉरी सर, सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था। सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
3: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा। भैया पागल है क्या?
4: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे।
3: पागल पागल
4: आप तो देने पड़ेंगे सर।
3: हेलो
4: अब तो देने, अब तो फंस गए देने पड़ेंगे, अब तो फंस गए देने पड़ेंगे।
3: कौन बोल रहा है? विपिन?
4: नहीं सर, अब तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे।
3: पागल है क्या? दिमाग खराब है क्या तेरा? पैसे देने पड़ेंगे, पैसे
4: अब तो फंस गए सर।
3: हेलो
5: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ। सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया।
3: उसके पैसों को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
5: नहीं सर वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ।
3: मतलब ये पक्की बात है आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
5: हाँ जी, अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर, मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब।
1: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। ए पगला
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
6: अब मिर्ची खा।
8: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

ज्यूल थीफ की शूटिंग करते करते प्रेम पुजारी की स्क्रिप्ट लिख डाली देवानंद साहब ने। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। जी, जब ज्यूल थीफ फिल्म की शूटिंग नेपाल में हो रही थी तब देवानंद साहब ने वहाँ पे दूरबीन से चाइना का बॉर्डर देखा और उनको ऐसा कुछ दिखा कि एक सिपाही छोटे से पपी के साथ, डॉगी के साथ खेल रहा है। तब उन्होंने सोचा कि ऐसा कुछ सीन भी फिल्म में जरूर होगा। और अगर आप प्रेम पुजारी फिल्म देखें तो उसमें एक छोटा सा डॉग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि कहानी कैसे आगे बढ़ती है। हम भी आगे बढ़ते हैं पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए।

0: by Gulzar Saab called Namkeen. And in the evening, I was working in a film called Jwalamukhi with Prakash Mehra and Shatrughan Sinha. So, ये तो लिखा हुआ था कि 7 बजे की शिफ्ट है, लेकिन संजीव कुमार फिल्म सिटी में 12:30 बजे से पहले नहीं पहुंचा, और फिर 2 बजे की शिफ्ट में शत्रुघ्न सिन्हा 5:30 बजे से पहले नहीं पहुंचे। बच्चन साहब एंड शशि कपूर फर्स्ट पर्सन टू अराइव ऑन द सेट, दीज वर द टू पीपल हु वुड जस्ट आप अपनी घड़ी, नाउ दीज वर पीपल यू एडमायर्ड, एंड देन इट इज टू यू हुम यू चूज टू एम्यूलेट।
1: क्या बात है भाई, चलिए अभी देर नहीं करते हैं, टाइम हो गया है बहुत ही ब्यूटीफुल गाना सुनने का। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Purani Jeans with Charu. Only on.

0: ना देखूं।
1: भाई कुछ दिन पहले ना मैं टीवी पर नसीब फिल्म देख रही थी और मेरे ऐसे मतलब होश उड़े जा रहे थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। मतलब लिटरली मैं फिल्म देखते हुए सोच रही थी, अरे इसमें ये भी है, अरे इसमें ये भी है, अरे इसमें ये भी है, कितने सारे एक्टर्स। और मनमोहन देसाई साहब की ना इस बात में तो दाद देनी पड़ेगी भाई, मल्टी स्टारर फिल्म वो जो बनाते थे उसमें इतने सारे एक्टर्स होते थे। सोचिए आप इतने सारे एक्टर्स को मैनेज करना, हैंडल करना, उनके ईगो क्लैशेस, उनके टैंट्रम, उनकी पंक्चुअलिटी, जो भी उनकी डेट्स वगैरह वो सब हैंडल करना, उफ कितना मुश्किल हो जाता होगा। ये नसीब फिल्म की मैं बात कर रही हूँ, इसमें अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी, रीना रॉय, ऋषि कपूर, किम, और फिर विलन्स में सब भर रखे हैं भाई, अमजद खान, कादर खान, अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर, फिर प्राण साहब भी हैं, कितने सारे कैरेक्टर एक्टर्स हैं। Hats off to this guy, मनमोहन देसाई साहब, या जो भी उस टाइम पे मल्टी स्टारर फिल्म्स बनाते थे, सब दाद के काबिल हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

1981 की फिल्म दर्द का ये गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। नक्श लियालपुरी साहब ने इसे लिखा है। वैसे इनका असली नाम जसवंत राज शर्मा था, नक्श लियालपुरी इनका पेन नेम था। इनकी एक और गजल मैं पढ़ रही थी, तुझको सोचा तो खो गई आँखें, दिल का आईना हो गई आँखें, खत का पढ़ना भी हो गया मुश्किल, सारा कागज भिगो गई आँखें, कितना गहरा है इश्क का दरिया, इसकी तह में डुबो गई आँखें, दो दिलों को नजर के धागे से एक लड़ी में पिरो गई आँखें, नक्श आबाद क्या हुए सपने और बर्बाद हो गई आँखें। वाह वाह वाह वाह। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। एक और सुंदर गजल सुनेंगे, शहरयार साहब की लिखी हुई, उमराव जान फिल्म से। सुनते रहिए।

0: पुरानी चीज विद चारू ओनली ऑन मिर्ची मिर्ची
1: हेलो
2: सुमन जी, गुड इवनिंग। इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
1: हाँ जी हाँ जी।
2: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
1: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
2: होल्ड कर रहा हूँ।
1: हाँ जी हेलो।
2: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
1: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
2: कनेक्ट नहीं हो पाता है? सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
1: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, तो स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें।
2: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
1: है 35/14A फर्स्ट फ्लोर नगर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
2: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सिक्योरिटी की वजह से आपका सनशाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
1: सिक्योरिटी के लिए सनशाइन क्यों?
2: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
1: मेरा सनशाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला है।
2: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
1: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
2: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
1: बी पॉजिटिव, दो दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
2: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
1: राहुल शर्मा। ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता
2: तो
1: दो।
2: तो मैं आपको, अरे मैडम,
1: सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल।
2: सुमन जी, आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं? नहीं तो मैं, अरे मैडम, आप मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है। आप अगर मेरा मतलब है, अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
3: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
1: नहीं,
2: दोबारा कॉल करेंगे। आप क्या वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
0: इट्स पटाक। पुरानी चीज विद चारू।

मोहम्मद रफी साहब की आवाज में ये गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। आपको पता है मोहम्मद रफी साहब ने अपना जो लास्ट गाना रिकॉर्ड किया था उसकी लाइंस क्या थी? तेरे आने की आस है दोस्त, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त, महकी महकी फिजा ये कहती है तू कहीं आस पास है दोस्त। 1981 में रिलीज हुई फिल्म आस पास का ये गाना है। ऐसा सुनने में आता है कि रफी साहब ने ये गाना अपनी डेथ के कुछ आवर्स पहले उसी दिन 31 जुलाई 1980 को ही रिकॉर्ड किया था। खैर, ये गाना रिकॉर्ड हुआ था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए। और एलपी और रफी के सुपर्ब कॉम्बिनेशन का एक और गाना यहाँ पर सुनते हैं, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन।

0: 1972 की फिल्म गोरा और काला, जिसमें गोरा भी राजेंद्र कुमार बनते हैं, काला भी राजेंद्र कुमार बनते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। जी, दो जुड़वा भाइयों की स्टोरी है जिनमें फर्क ये होता है कि एक गोरा होता है और दूसरा किसी डिसऑर्डर की वजह से काला। इस रोल के बारे में पुराने इंटरव्यू में सुनिए राजेंद्र कुमार साहब ने क्या कहा था।
1: गोरा और काला भी करने की वजह जो ये थी, वो टू डिफरेंट कैरेक्टर्स, एक काले का और एक गोरे, तो वो जो मौका था एज एन एक्टर वो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे काले का रोल बहुत पसंद था, उसको बहुत शौक से मैंने किया और पूरा पांव से लेकर सर तक काला बनना पड़ता था और 3-3.5 घंटे लगते थे। तो उसके बाद फिर जब गोरे की बारी आती थी तो 1-1.5 घंटा उसको साफ करने में लगता था, फिर गोरा बनना पड़ता था। खैर, तो बड़ा मजा आता था उसमें।
0: यार, पुराने जमाने में इनको ये सब करने में ज्यादा दिक्कत आती होगी ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी इतनी, रिसोर्सेज नहीं थे, और उसी वजह से ना, क्योंकि अब हमको इतने इफेक्ट्स और CGI वाले सब चीजें देखने की आदत हो गई है, तो पुरानी फिल्मों में जब ये सब चीजें देखते ना, कई बार थोड़ी फनी भी लगती है। खैर, दोज वर द डेज। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुराने जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू।

आपको पता है बप्पी दा ने, बप्पी लायरी ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक रिकॉर्ड भी बनाया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये रिकॉर्ड था एक ही साल में 33 फिल्मों के 180 गाने रिकॉर्ड करने का। यस, दिस हैपेंड इन 1986। इन 33 फिल्मों में 15 तो हिंदी फिल्में थी भाई, वो वैसी वाली फिल्में जो 80s में नहीं आई थी, मैं बलवान, इल्जाम, इंसाफ की आवाज, सिंहासन, मेरा धर्म, ऐसी फिल्में। फैक्ट्री लगी हुई थी भाई, फैक्ट्री, गानों पे गाने निकल रहे थे। चलिए अभी जो गाना निकल कर आया है बप्पी दा का कंपोज किया हुआ, इट इज सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

1975 की फिल्म मौसम का ये गाना पिर्ची सुन रहे हैं आप। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इस फिल्म में अपनी परफॉर्मेंस के लिए शर्मिला टैगोर जी को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला था। इस फिल्म के डायरेक्टर गुलजार साहब थे और आपको पता है गुलजार साहब इस रोल के लिए पहले जरीना वहाब जो तब नई नई थी उनको कास्ट करने का सोच रहे थे, लेकिन शर्मिला टैगोर जी को जब इस फिल्म के बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि वो ये रोल करना चाहती हैं। और जिस तरह फिल्म का सब्जेक्ट था गुलजार साहब को लगा कि कोई पॉपुलर एक्ट्रेस होगी तो फिल्म को बेचने में आसानी होगी, उसकी कमर्शियल वैल्यू ज्यादा होगी, इसीलिए फाइनली शर्मिला टैगोर जी को साइन किया गया। चलिए, दाने दाने पे होता है खाने वाले का नाम, रोल रोल अवार्ड अवार्ड पे होता है उसे पाने वाले का नाम। मेरा नाम है चारू, आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स और मिर्ची

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना। मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो हेलो, मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
4: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
3: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
4: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
3: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पे जान। ये 1 महीने तक कम से कम।
4: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
3: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
4: बोलो।
3: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
4: कौन सा?
3: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
4: कच्चा? अच्छा।
3: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
4: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ?
3: वो पक्का हो जाएगा, मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
4: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
3: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
4: कुकर तो है।
3: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
4: अच्छा।
3: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
4: सोडा,
3: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
4: लहसुन? यार पेट्रोल बना रहा है या वो बना, खाना बना रहा है?
3: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
4: मतलब उसको पकाऊं?
3: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
4: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा रिस्क, कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
3: यह काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना, पकाना नहीं है।
4: नहीं नहीं कोई मैं रिस्क नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
3: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
4: चल जाएगी?
3: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
4: अबे कौन बोल रहा तू?
3: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
4: अरे यार ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
6: अब मिर्ची खा।
8: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

आय हाय हाय हाय, दो डगे की नौकरी और लाखों का सावन, क्या कंपैरिजन बिठाया है मलिक साहब ने। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वर्मा मलिक इस गाने के लिरिसिस्ट है, रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का नाम। और ये जो गाना है ना, ये एक्चुअली फिल्म में जो मौसमी चैटर्जी का किरदार था उन पे पिक्चराइज्ड होना था, लेकिन उस टाइम वो सॉर्ट ऑफ फुल टाइम प्रेग्नेंट थी, तो जीनत अमान पर ये गाना पिक्चराइज हुआ। एंड अगर आप फिल्म देखें ना, तो जीनत अमान का जो किरदार है, उनका जो रोल है, उसके साथ ये गाना का जो मूड है, जिस तरह का ये गाना है, वो जाता नहीं है। चलिए अभी हम जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे, फिर वापस आते हैं राइट पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
2: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
1: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Purani Jeans. Purani Jeans. With Charu. Only on

0: खयाम साहब की ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ। आपको पता है खयाम साहब जब 16-17 साल के थे, ये मैं 1943-44 की बात कर रही हूँ, तब जब इन्होंने अपने घर में कहा कि ये फिल्मों में एक्टर बनना चाहते हैं, तब इनके साथ क्या हुआ एक पुराने इंटरव्यू में इन्होंने शेयर किया था।
1: एक्टिंग के लिए ये हुआ कि घर वालों ने हमें निकाल दिया और पिटाई भी हुई, लेकिन एक माहौल था घर में शायरी का एंड मौसीकी के रिकॉर्ड सुनना, शायरी और अदबी किताबें, कुतुबखाना, वो एक घर में माहौल था। लेकिन इसकी हमने सजा भुगती और घर निकाला कहेंगे, देश निकाला कहें, तो वो हमने सहा
0: जी। और घर से निकले तो पंजाब के राहों से होते हुए, लाहौर से होते हुए, लुधियाना से होते हुए बॉम्बे पहुंचे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। सुन लेते हैं खयाम साहब की एक और ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन ऑन मिर्च।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारों ओनली।

हसीना मान जाएगी फिल्म का गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इस गाने के राइटर का नाम है अख्तर रुमानी। अख्तर रुमानी साहब एक राइटर थे जिन्होंने कई फिल्मों की स्क्रिप्ट डायलॉग्स वगैरह लिखे हैं, कुछ गाने भी लिखे हैं जिनमें से एक ये गाना है। और अख्तर रुमानी साहब ना जो आइकॉनिक रेडियो प्रेजेंटर थे अमीन सयानी साहब, उनके दोस्त थे ये दोनों। सेंट जेवियर्स कॉलेज बॉम्बे में साथ में पढ़ते थे। इनफैक्ट इन्हीं के कंटेम्प्रेरीज थे, इन्हीं के साथ कॉलेज में जो थे एक तो सिंगर महेंद्र कपूर साहब और डायरेक्टर विजय आनंद देवानंद के भाई। ये चारों लोग सॉर्ट ऑफ एक ही बैच के आप कह सकते हैं। इसी बात पे आप भी अपने कॉलेज के स्कूल के दोस्तों को याद कीजिए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए।

0: Nerdy.
1: Escabana, escabana, sacabana.
2: Rabana.
1: Murga, murga. Na vida la murga.
2: Nerdy, murga.
3: Hello? Hello?
4: Sir, very good evening. Thanks a lot.
3: हाँ बोलिए
4: सर. I'm so sorry सर, but सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
3: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं क्या
4: बात है सर, आप तो सर पूरा बता दिए.
3: क्या कह रहे हो भैया, कहाँ क्या हो गया?
4: बता रहा सर, आपने उसमें से अभी तक कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
3: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
4: आई एम सो सॉरी सर, ऐसे कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
3: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
4: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
3: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
4: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
3: मैं पागल पागल है क्या?
4: अब तो देने पड़ेंगे सर.
3: हेलो.
4: अब तो फंस गए देने पड़ेंगे.
3: कौन बोल रहा है? विपिन?
4: नहीं सर, अब तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
3: अब
4: तो फंस गए सर.
3: हेलो
5: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ. सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया.
3: उसके पैसे को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
5: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे. आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
3: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
5: हाँ जी. अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर. मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
2: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Mirchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La vieja la burga.
0: Mirchi, burga.
2: हेलो
3: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
3: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
2: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
3: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
2: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
3: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
2: बोलो।
3: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
2: कौन सा?
3: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
2: अच्छा।
3: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
2: कच्चे तेल से गाड़ी चलाऊं?
3: वो पक्का हो जाएगा, मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
2: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
3: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
2: कुकर? हाँ कुकर तो है।
3: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
2: अच्छा।
3: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
2: सोडा,
3: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
2: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो बना खाना बना रहा है?
3: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
2: मतलब उसको पकाऊं?
3: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
2: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा, रिस्क कौन लेगा, ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
3: या एक काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना, पकाना नहीं है।
2: नहीं नहीं कोई मैं सर्विस नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
3: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
2: चल जाएगी?
3: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
2: अबे कौन बोल रहा है तू?
3: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
2: अरे यार जरा ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

चल चल चल चल चल चल जब ठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बाटे पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और होश उड़ाए ओए

घंटा लेकर किसी का। यू आर लिस्निंग टू 103.3 FM HD2 WPRP प्रिंसटन न्यू जर्सी एंड 92.7 W224 CW फ्रैंकलिन पार्क न्यू जर्सी। रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
2: जो सुनता है सबकी, करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

आर के जूल्स। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आर के जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: अपनी पूरी पोटेंशियल पर काम करें ताकि आपका माइंड आपकी स्ट्रेंथ बने. आइए इसे समझे.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया.
3: मुझे एक चीज बताइए कि थोड़ी देर पहले मैं आपसे जब कह रहा था कि कभी कभी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपने ब्रेन को ट्रिक करना पड़ता है, आप युक्ति कह रहे थे, मैं बेवकूफी कह रहा था. जैसे एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि आपको एक माउंटेन क्लाइंब करना है, बहुत देर से आप चले जा रहे हैं, पानी खत्म हो गया, आसपास कोई आदमी नहीं है, भूख लगी है, बहुत प्यास लगी, आप गिव अप करने का मन हो गया और मैं नहीं चढ़ सकता, अब तो हो गया, मैं यहीं पे गिर रहा हूँ. और ऐसी स्थिति हम सबके साथ जिंदगी में कभी ना कभी जरूर हुई है. और फिर आप चलते चलते आप गिरने वाले हैं, अचानक आपको सामने 2-3 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा लेक दिखाई देता है, तो अचानक आपके मन में स्फूर्ति आ जाती है, आप दौड़ के वो 2-3 किलोमीटर दौड़ जाते हैं वो लेक तक. तो एक समय ये था कि आपके पास बिल्कुल शक्ति नहीं थी, मरने तक आ गए थे आप, भूख प्यास से तरस रहे थे आप, और आप बोल रहे थे कि मेरे शरीर में इतनी ताकत ही नहीं है कि मैं एक कदम और चल पाऊं. और अचानक आपके ब्रेन ने एक पानी का बहुत बड़ा तालाब देख लिया और आप में स्फूर्ति फिर से आ गई. तो ये क्या है, वही शरीर है, वही थॉट प्रोसेस है, वही इंसान है. तो कहीं ना कहीं हम डिसिप्लिन तो काम आ रहा है लेकिन ब्रेन को बेवकूफ भी आप बना रहे हैं ना.
4: मन की शक्ति, इसी को तो कहते हैं ना माइंड पावर. तो मन की शक्ति क्या थी कि जब आपने देखा, आपने कहा उन्होंने लेक को देखा, तो मन को जो चाहिए था उसको प्यास लगे थे.
3: बिल्कुल.
4: तो मन ने जब वो चीज देखी तो उसको क्या लगा कि ये वहां पानी है, ये मुझे चाहिए, तो वो पावर आ गई. ये सिर्फ यहाँ नहीं होता, हर जगह में आप देखेंगे, चाहे वो मैराथॉन्स होते हैं या कहीं होते हैं, वो कहते हैं जो लास्ट लेग ऑफ रेस होती है ना,
3: वो सबसे जरूरी होता है,
4: वो फिजिकल से नहीं होती, वो ज्यादातर मन से होता है.
3: बिल्कुल.
4: क्योंकि बॉडी गिव अप कर रही होती है, बॉडी रुकने के लिए कह रही होती है, पर आपको क्या दिखाई दे रहा होता है, आपको वो फिनिश लाइन दिखाई दे रही होती है, आपको वो गोल्ड मेडल मिलता हुआ दिखाई दे रहा होता है, आपको वो लेक दिखाई दे रही होती है, किसी बच्चे को वो अपना जो उसका ड्रीम है उसको
3: फुलफिल होता दिख रहा होता है,
4: समझो वो कोई यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है वो दिखाई दे रहा होता है. दिस इज कॉल्ड अ विजुअलाइजेशन टेक्निक.
3: बहुत बढ़िया.
4: आप अपने मन को विजुअलाइज कर रहे हो तो वो जब आपको रिजल्ट दिखाई देता है तो रिजल्ट आपके अंदर वापस ताकत लेकर के आता है. जैसे कई बार क्या करते हैं कई लोग, जैसे हमारे धर्म में क्या कहेंगे, आप अच्छे कर्म करो तो स्वर्ग में जाएंगे. तो लोग कहते हैं ये बेवकूफ बना रहे हैं, कई बार कहते हैं, पर एक्चुअली क्या होता है, इट्स अ फॉर्म ऑफ मोटिवेशन ना.
3: राइट राइट.
4: क्या आप, जैसे वो बच्चे का मोटिवेशन, आप इतना पढ़ेंगे तो आपका इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, आप अच्छे कर्म करेंगे तो आप वहां पहुंच जाएंगे. पर ये जरूरी है, अगर आप एंड रिजल्ट नहीं देखेंगे, उसको विजुअलाइज नहीं करेंगे, तो आपका जो पोटेंशियल है, हम किसी से कंपेयर नहीं कर रहे
3: अपने आप से,
4: पर हम अपना बेस्ट पोटेंशियल और बेस्ट कैपेसिटी तो दें. हमें फर्स्ट आना है वो जरूरी नहीं है, वर्ल्ड में नंबर वन आना है वो जरूरी नहीं है, पर कभी कभी हम अपना जो पोटेंशियल है, अपनी जो कैपेसिटी है, उस तक भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते हैं.
3: क्या बात है, बहुत बढ़िया.
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया. ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: जब आपका मोटिवेशन लैक करने लगे तो उसे कैसे सस्टेन करें? आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: मुझे एक चीज बताइए, कभी कभी क्या होता है जब हम अपने पोटेंशियल से, जो आप कह रहे हैं हमें कुछ अचीव करना है, बहुत बड़ी चीज हमको करनी है, जिंदगी में एक सपना था वो पूरा करना है, और आज वो पूरा हो गया, या आज वो दिन है जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, आज वो सक्सेस हमें मिल गई। तो कई बार ऐसा होता है, हमने देखे बड़े बड़े लोगों के साथ, जब वो एक बहुत बड़ी चीज दुनिया में जब टिक हो जाती है, जब वो सक्सेस पा लेते हैं, उसके बाद उनकी जिंदगी रैपिडली नीचे गिरती है, क्योंकि अब मोटिवेशन ही नहीं रहा। जैसे अभी हाल फिलहाल में हम लोग कुछ लोग बात कर रहे थे कि अब जोकोविक के लिए कोई मोटिवेशन ही नहीं बचा, क्योंकि उसके जो दो सबसे बड़े एक तरह से फियर्स कंपेटिटर्स थे, नडाल और फेडरर, वो रिटायर हो गए। तो वो जो मोटिवेशन था सुबह उठ के, आज मैं ये करूंगा, आज मैं वो करूंगा, क्योंकि मुझे फिट रहना है, इनसे मेंटल बॉन्ड, मेंटल टफनेस दिखाना था, वो कहीं ना कहीं चला गया। तो हाउ डू यू मोटिवेट योरसेल्फ जब एक बहुत बड़ा हिस्सा आपकी जिंदगी का, जो 20-30 साल का स्ट्रगल रहा कुछ अचीव करने के लिए, वो आपने अचीव कर लिया, और अब सडनली आपकी जिंदगी में कुछ रहा नहीं अचीव करने के लिए?
4: आपका मोटिवेशन अचीवमेंट पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। आपका मोटिवेशन जर्नी को एंजॉय करने में होना चाहिए। अगर वो जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो अपनी जर्नी को एंजॉय करता है, खेल को एंजॉय करता है, तो वो सदा उस खेल को एंजॉय करेगा,
3: तो फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है,
4: सामने कौन है, आज वो कंपेटिटर है कि नहीं है, लेकिन उसको मजा किस में आ रहा है? खेल में नहीं आ रहा है,
3: कंपटीशन में आ रहा है,
4: उसको किसी को हराने में मजा आ रहा है।
3: तो ये बहुत जरूरी है, फर्क है कि हराना तो है, लेकिन अगर आप प्रोसेस एंजॉय कर रहे हैं,
4: कंपटीशन है, एक ने हारना है, एक ने जीतना है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम, दैट इज डिफरेंट। आप वैसे भी उसके लिए स्पोर्ट शुरू नहीं करते हैं कभी।
3: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया।
4: वो तो कब आपका एम बन जाता है, बाद में बन जाता है, वो भी तो एक स्टिमुलेंट है ना। क्या है वो? वो भी एक स्टिमुलेंट है कि जब हम जीतेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा लगता है, आपको एक हाई फील होता है। बट दैट वाज नेवर द पर्पस ऑफ द गेम। द पर्पस ऑफ द गेम, आपने वो शुरू क्यों किया था? आपको वो खेलने में मजा आता था।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: अब नेक्स्ट क्या? इस सवाल को कैसे हैंडल करें? जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: ये अच्छी बात है अपने के, लेकिन सिस्टर श्रेया कभी कभी क्या होता है, हर इंसान को आगे बढ़ने के लिए ना एक गोल पोस्ट की जरूरत होती है। तो मैं सफर भी तभी इंजॉय करूंगा, जर्नी तब इंजॉय करूंगा जब मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है। आपने कहा था ना वाई बहुत जरूरी है। तो जब एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट या बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाती है तो जो दूसरा गोल पोस्ट है वो डालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए मैंने 20-30 साल दे दिए, स्ट्रगल कर लिया, सब कुछ सैक्रिफाइस किया और आपको मिल गया, उसके बाद इंसान थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है कि अब क्या, अब और क्या हासिल करना, ये तो कर लिया। आई हैव बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, द मोस्ट वट एवर अकम्प्लिश पर्सन, अब इसके बाद क्या करना।
4: कि richest person आप बन गए वो automatic हो जाना चाहिए था, that shouldn't have been your goal. See, for example, आज हम एक actor है, फिर एक दिन ऐसा होता है हम acting करते करते एक number one actor बन जाते हैं।
3: अब क्या?
4: पर मैं actor क्यों था?
3: मुझे acting पसंद है।
4: मुझे acting पसंद आती थी, चाहे सामने 10 लोग बैठे थे, मैं theater में perform करता था तो भी मुझे अच्छा लगता
3: था।
4: सही
3: बात है।
4: फिर मैं फिल्म में परफॉर्म करने लगा तो भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर परफॉर्म करते करते मैं किसी दिन नंबर वन बन गया तो भी मुझे अच्छा लगा। फिर मैं यंग आर्टिस्ट का रोल प्ले करता था तो भी ठीक है, मेरी एज बढ़ गई है। अब मुझे जो रोल मिलते हैं वो शायद हीरो के नहीं मिलते हैं, मुझे फादर के मिलते हैं या ब्रदर के मिलते हैं, मैं तो भी उस चीज को एंजॉय करता हूँ। बिकॉज व्हाट एम आई एंजॉयिंग?
3: द प्रोसेस ऑफ एक्टिंग।
4: आई एम एंजॉयिंग द प्रोसेस ऑफ एक्टिंग। एक्टिंग को मैं एंजॉय कर रहा हूँ,
3: जो बच्चन साहब करते हैं
4: इसको एंजॉय नहीं कर। हाँ, बहुत सारे ऐसे जिनको हम वेटरन्स कहेंगे, हम इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स देंगे। क्यों? क्योंकि उनके लिए जो गोल था इट वाजंट अबाउट जस्ट बीइंग नंबर वन।
3: बिल्कुल सही कह रही हैं।
4: उनका जो गोल था एक तो एक्टिंग और उसको पॉलिश करते रहना, उसको रिफाइन करते रहना, उसमें इम्प्रूवमेंट लाते रहना, और उसके लिए तो हमने देखा कोई एंड है ही नहीं।
3: बिल्कुल नहीं है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: été.
1: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: What next? सोचना काफी नहीं, लगातार लगे रहना जरूरी है. कैसे? समझते हैं.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया.
3: ये बहुत अच्छी बात है. कभी कभी इंसान कहते हैं व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद मैं क्या करूं. कुछ दिनों पहले हमारे जो कैमरा पे रोहित से भी आप बात कर रही थी, उसने कहा कि भाई अब मैं क्या करूं, तो शायद हम उसको कह सकते हैं बच्चन साहब की तरह बनो कि भाई यंग रोल्स नहीं मिल रहे हैं, अब ओल्ड रोल्स मिल रहे हैं. लेकिन ओल्ड रोल्स में भी एक्सपेरिमेंट करो. कभी आप किंग लियर बन रहे हैं, कभी आप साइकोपैथ बन रहे हैं, कभी आप अलग अलग चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं.
4: हम क्या करते हैं, हमें लगता है हम कुछ करेंगे तो खुशी मिलेगी. हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम ह्यूमन बीइंग नहीं, हम ह्यूमन डूइंग है. तो हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं. हम करते हैं, हम करेंगे, ये करेंगे. जैसे वो बच्चे का एक पहले गोल होता है, टेंथ में इतने मार्क्स आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा, आ जाते हैं. फिर उसको होता है इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा ना तो मुझे खुशी मिलेगी, हो जाता है. फिर एक मोनोटोनी जैसी आने लग जाती है, मोनोटोनस होने लग जाता है. फिर उसको लगता है अब क्या. फिर उसको लगता है अच्छा थोड़ा मैं लाइफ में सेटल हो जाऊं, एक अच्छी जॉब मिल जाए, एक अच्छी सैलरी हो जाए तो हो जाएगा. वो भी हो जाता है, ऐसा थोड़ी ना होता नहीं है. जॉब भी लग जाती है, सैलरी भी आ जाती है, हाई मिला ना. वेन एवर यू अचीव समथिंग, वेन एवर, वो एक स्टिमुलेंट का काम करता है. फिर आपको बहुत अच्छा लगता है थोड़े दिन के लिए, फिर थोड़े दिन के बाद फिर वही होने लग जाता है अब क्या. तो एक बार प्रमोशन हो जाए, थोड़े समय के बाद वो भी हो जाती है, फिर आपको बहुत अच्छा लगता है. अब आप कहते हैं फिर क्या. कोई तो लाइफ में होना चाहिए जिसके साथ मैं अपनी प्रमोशन, अपने सुख दुख शेयर कर सकूं. कोई पार्टनर होना चाहिए. अच्छा शादी कर लेते हैं, फिर वो भी हो जाता है. इनिशियली 6 months ब्लिस, उसके बाद वो भी एक जर्नी है. सो इट कीप्स हैपनिंग लाइक दिस. आप पोस्टपोन करते रहते हैं वहां वहां वहां वहां वहां. आप जर्नी को बेसिकली इंजॉय नहीं कर रहे हैं. एक होता है खुशी से वो सारी जीवन की यात्रा करना, और उसमें हर चीज जो आपने अक्वायर किया उसका पर्पस बहुत अलग होता है. मार्क्स का पर्पस था अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी का पर्पस था अच्छी जॉब, अच्छी जॉब का पर्पस था एक स्टेबल इनकम, स्टेबल इनकम का पर्पस था एक कंफर्टेबल लाइफ. कहाँ है उसके अंदर खुशी. लेकिन जब हम हर चीज को एक स्टिमुलेंट बना देंगे, हम कहेंगे ये मिला तो मुझे अच्छा लगा, ये मिला तो मुझे अच्छा लगा, फिर एक दिन आकर कहते अब क्या, अब क्या, अब कौन सा ऐसा स्टिमुलेंट हो जो मुझे थोड़ा सा हाई क्रिएट करे. तो वो इक्वेशन ही गलत चल रही थी. तो जब वो इक्वेशन गलत चलती है तो फिर एक दिन आकर आपको बहुत बोरिंग लगने लगता है. आपको लगता है अच्छा अब क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट.
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया. ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: परफेक्शनिस्ट होना गलत नहीं, बस बैलेंस जरूरी है। कैसे, समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: ऐसे केसेस में मुझे बताइए जो परफेक्शनिस्ट्स होते हैं, कई बार मैं देखता हूँ वो बहुत हाईली अनहैप्पी होते हैं, क्योंकि हर चीज में उनको अपनी कमियां नजर आ रही होती हैं कि ये रह गया वो रह गया, और उनको बाकी लोगों को लगता है वाह तुमने कमाल काम कर दिया यार, क्या आउटस्टैंडिंग है, लेकिन वो हमेशा नहीं ये अच्छा हो सकता था, वो गहरे सोच में चले जाते, गहन में चले जाते, नहीं ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए एक्सेट्रा। तो परफेक्शनिस्ट को का जो पोजीशन हमने सोसाइटी में दिया, या कहीं ना कहीं हम बोलते हैं अरे परफेक्शनिस्ट, हम हमेशा उसको अव्वल दर्जे पर रखते हैं कि यार ये परफेक्शनिस्ट अलग लेवल पे काम करता है, लेकिन वो एज ह्यूमन बीइंग ज़्यादातर अपने अंदर घुसे होते हैं, उसी चीज़ पे लगे होते हैं, जो काम 3 दिन में हो सकता है उसको 300 दिन में करते हैं, और उसको हम बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। तो फॉर परफेक्शनिस्ट मैंने देखा डिसिप्लिन बहुत हाई होता है, वो हर चीज़ सही तरीके से मिलजुल के लगातार लग के करते हैं, लेकिन वो डीपली अनहैप्पी होते हैं।
4: नहीं, जरूरी नहीं है, परफेक्शन बहुत जरूरी है। परफेक्शन हम सबका एक नेचुरल नेचर है, हम सबको अच्छा लगता है परफेक्शन, सबको अच्छा लगता है। कोई भी काम करें हम उसको परफेक्टली करें, हम एक डाइनिंग टेबल सेट करें हम परफेक्टली करें, हम एक रिकॉर्डिंग करें हम परफेक्टली करें, इट्स ओके। लेकिन जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है दैट इज सेल्फ क्रिटिकल होना। परफेक्शन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है हमारा दूसरा संस्कार कि हम बहुत क्रिटिकल है सेल्फ के प्रति। सेल्फ एनालाइज करना तक भी ठीक है, आपने एनालाइज किया, समझो आज हमने आज सारा दिन रिकॉर्डिंग करी, फिर हमने शाम को बैठ करके थोड़ा सा एनालाइज किया कि ऐसे कर सकते थे या ऐसे कर सकते थे, वो भी जरूरी है बिकॉज वो हमारे लिए एक इम्प्रूवमेंट, इट्स अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। लेकिन एक होता है क्रिटिकल होना, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये वो आपको अच्छा फील नहीं कराता, एक वो चीज। और दूसरा, हमें परफेक्शन पसंद है
3: लेकिन सामने वाले को नहीं है,
4: कंट्रोल करना। परफेक्शनिस्ट क्या होता है, खुद तो जैसा करता है फिर उसको तो सारे के सारे वैसे होने चाहिए। तो ये दो चीजें आपको डिप्लीट करती है, एक बहुत ज्यादा अपने प्रति सेल्फ क्रिटिकल होना, एनालाइज करना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि गलती नहीं पता होगी तो हम चेंज कैसे लेकर आएंगे। लेकिन अपनी निंदा करते रहना, अपने को नीचे गिराते रहना, अपने से ठीक से बात नहीं करना, कोई हमें क्रिटिसाइज करे तो हमें अच्छा नहीं लगता।
3: लेकिन फिर तो कभी आमिर खान बनेगा ही नहीं इंसान।
4: हमें वैसे तो किसी को कुछ बनना जरूरी नहीं है, एवरीबडी हैज अ वेरी वेरी डिफरेंट प्रोसेस। जरूरी थोड़ी ना है कि जो आपको परफेक्शनिस्ट दिखाई दे रहे हैं, हमने क्या कहा था, जरूरी नहीं है वो अनहैप्पी है, जरूरी नहीं है वो हैप्पी है,
3: और जरूरी नहीं कि हमारी क्षमता वैसी है,
4: जरूरी नहीं है हमारी क्षमता वैसी है। पर परफेक्शन के लिए एम करना कुछ गलत नहीं है। परफेक्शन अगर मैं एम कर रहा हूँ, आज मैं कोई काम भी कर रहा हूँ, उसमें एक एम रखना कि ग्रेजुअली, जैसे हम रोटी की बात ही कर रहे थे, हम एम भी नहीं रखें कि ये गोल बने। एक है वो टेढ़ी मेढ़ी बनी और मैंने रात को बैठ के सोचना शुरू कर दिया, मेरे से तो बनती नहीं है, मेरे से तो होता नहीं है, मैं तो कर नहीं सकता, या हमने बना ली तो हम दूसरे को कहना शुरू करें गोल बननी चाहिए, ये ऐसा क्यों बना, ये ऐसा क्यों हुआ,
3: तो ये भी नहीं करना।
4: वो आपकी पावर को डिप्लीट कर रहा है। पर अगर आज इंडिया का मैप बना भी तो आप एम तो रखेंगे ना कि धीरे धीरे धीरे धीरे मुझे उसको गोल बनाना है, तो वो एम रखने में क्या बुराई है। बुराई ये है कि आप दो जने रोटी बना रहे थे, उसने 2 दिन में बना ली, आपको 10 दिन लग गए, वो प्रॉब्लम है। आप एम रखो परफेक्शन का, पर आप उसको ऐसे नहीं कंपेयर नहीं करो किसी के साथ।
3: ठीक है, जिस मतलब each to their own,
4: each one has their own capacity, उनके talent, expertise, skill, past experience, there are too many factors जो work करते हैं।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Presenting the best diamond jewelry on Oak Tree Road, Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
1: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
2: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है.
3: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
2: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
4: मॉर्गेज ढूंढने या रजिस्ट्रेशन और क्लोजिंग में खा रहे हैं मात, या प्राइसिंग और ऑफर में कोई बता नहीं रहा है हेल्प का हाथ?
0: नो वरीज, सुनिए रियल एस्टेट की बात डील मेकर आदर्श के साथ. रॉक द रियल एस्टेट फील्ड विद आदर्श लाल. अगर रियल एस्टेट में आपकी इंटरेस्ट है तो ये शो मस्ट है.
5: रियल एस्टेट की बात डील मेकर आदर्श के साथ एवरी ऑल्टरनेट थर्सडे बिटवीन 4 and 5 PM ओनली ऑन योर फेवरेट रेडियो मिर्ची 92.7 पर.
6: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: Discipline. क्या ये सिर्फ हैबिट है या कैरेक्टर ट्रेट? समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: मैंने एक और बहुत प्यारी कहानी पढ़ी, तो मैंने किताब नहीं पढ़ी लेकिन उसके बारे में पढ़ा है कि कहते हैं कि द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन जो हिस्ट्री में रहे हैं उनका नाम है मियामोटो मुसाशी, जापानीज थे, और उनकी किताब है द बुक ऑफ फाइव रिंग्स। उसमें वो कहते हैं देयर इज नथिंग आउटसाइड ऑफ योरसेल्फ दैट कैन एवर इनेबल यू टू गेट बेटर स्ट्रॉन्गर रिचर क्विकर और स्मार्टर। सो वो कहते हैं देयर इज नथिंग आउटसाइड ऑफ योरसेल्फ दैट कैन हेल्प यू बिकम दिस, एवरीथिंग इज विद इन, एवरीथिंग एग्जिस्ट्स, सीक नथिंग आउटसाइड ऑफ योरसेल्फ। तो ये पढ़ के, ये वन ऑफ माई फेवरेट कोटेशंस है, मैं इसको एक जमाने में अपने किताब अपने डेस्क पे रखता था। तो बेसिकली डिसिप्लिन जो है वो भी हमारे अंदर ही होता है, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन बाहर खोजना इज लाइक कस्तूरी मृग जो है वो जिंदगी भर घूमती रहती है ये खोजने के लिए कि मस्क की जो स्मेल वो कहाँ से आ रही है। तो मोटिवेशन डिसिप्लिन हमारे अंदर होता है। क्या डिसिप्लिन एक कैरेक्टर ट्रीट है?
4: सी, मोटिवेशन क्या करता है, ठीक है, डिसिप्लिन की एक आदत हम सबके अंदर, मतलब जो आपने कहा कि बहुत सुंदर कोट था कि सब कुछ हमारे अंदर है, सब कुछ हमारे अंदर होता है, सोल ओरिजिनली जिसको हम कहते हैं सतोगुणी। तो सतोगुणी का मतलब क्या है, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, खुशी, ज्ञान, पवित्रता, सब कुछ उसके अंदर है। जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, साड़ी वाइट है, इसको वाइट करना नहीं है, ये वाइट है, इसके ऊपर दाग लग गया और वो हटाने, तो वो सब कुछ अंदर होता है, पर मोटिवेशन ट्रिगर का काम करता है। कभी कभी मेरी साड़ी पे दाग लगे हैं पर आपकी वाइट ड्रेस देख करके मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं भी कर सकता हूँ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, वो ट्रिगर का काम करता है। तो वो भी जरूरी होता है।
3: तो
4: आसपास ऐसे अगर लोग हैं हमारे जो ये मेहनत कर रहे हैं अपने अपनी ड्रेस को वाइट रखने की, तो फिर मुझे भी एक इंसेंटिव मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है, संघ का रंग, एक इन्फ्लुएंस मिलता है कि मैं भी कर सकता हूँ, करना मुझे ही है, संस्कार मेरे अंदर ही है, लेकिन उसको हम क्या कर रहे होते हैं, जैसे अगर कोई हेल्दी खाना खाता है
3: उसको देख के हम इंस्पायर होते
4: हैं। मैं जंक खा रहा हूँ, मेरी दिल भी है, पर आप रोज हेल्दी खाते हैं
3: तो इंस्पायर हो।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

मन कस्तूरी रे। जग दस्तूरी रे मन कस्तूरी।

0: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
1: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
2: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
5: Are you a South Asian parent of a child with disabilities or special needs and feel isolated and helpless? Reach out to SKN Foundation's SCOPE program for their parent support group, educational empowerment programs, IEP consultations, job skills training for teens and inclusive events year-round.
6: It's 7:30 a.m. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या डिसिप्लिन सिखाया जाता है या डेवलप होता है, जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: मैंने आपसे सवाल इसलिए पूछा क्योंकि कई बार कहते हैं कि यार वो बड़ा डिसिप्लिन्ड है, मेरे से नहीं होता। तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता था कि डिसिप्लिन इनकल्केट किया जा सकता है, ये कैरेक्टर ट्रेट है या इमोशन है? कभी कभी होते हैं कि इमोशन अगर है तो जरूरी नहीं कि मैं ये इमोशन मेरे अंदर हो, मैं अलग किस्म का बंदा हूँ, लेकिन अगर ये कैरेक्टर ट्रेट है जिसको डिवेलप किया जा सकता है। क्योंकि कई लोग होते हैं जो कहते हैं मुझसे नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये मेरे पर्सनैलिटी के विपरीत है। तो ऑल आई वॉन्ट टू आस्क यू इज, डिसिप्लिन ऐसी चीज है जिसको इनकल्केट किया जा सकता है, जिसको अपने कैरेक्टर में बांधा जा सकता है?
4: डिसिप्लिन 100% डेवलप किया जा सकता है, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि आप किस चीज के लिए वो डिसिप्लिन यूज कर रहे हैं। ये भी कई बार विजडम होता है टू अंडरस्टैंड दैट आई कैनॉट डू दिस एंड आई कैन डू दिस, वो एक अलग चीज है। वो ये भी कई बार विजडम होता है टू अंडरस्टैंड दैट आई कैनॉट डू दिस एंड आई कैन डू दिस, वो एक अलग चीज है। वो समझना

0: शायद आपके बॉडी के कैपेसिटी के बियॉन्ड है, तो समझदारी ये होगी कि फिर आप वो रिस्क ना लें। तो ये भी एक, मतलब ये तो बेसिक, जैसे हम कहेंगे ये तो कॉमन सेंस है, आप जो गोल चूज कर रहे हैं आप उसको केयरफुली चूज करें और फिर आप उसमें डिसिप्लिन होकर के उसको अचीव करें। वो गोल जो आप चूज कर रहे हैं वो भी क्लैरिटी से करना चाहिए।
1: बहुत बढ़िया।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
1: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
2: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन।

0: वेयर
1: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानी।
0: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन।
2: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एक बेहतरीन गाइडेंस आपको देता है एक बेहतरीन दिशा, कैसे आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो आपने जो बोला इसका एक रिलेटेड सवाल है जो राजीव से आया है पुणे से। वो कह रहे हैं कि क्या आप मुझे प्लीज एडवाइस कर सकते हैं कि कई बार फॉलो अप करने के बाद, बहुत पेशेंट तरीके से फॉलो अप करने के बाद, जो सामने वाली पार्टी है वो मुझे सीरियसली नहीं लेती है और मुझे नेचुरली फिर गुस्सा आ जाता है कि कई बार बहुत पेशेंटली मैंने फॉलो अप किया लेकिन अब तुम मुझे सीरियसली नहीं ले रहे हो, मेरा काम तो नहीं हो रहा। तो इस केस में मैं क्या करूं, क्योंकि अगर आपको सीरियसली नहीं लिया जाएगा तो आपका भी नुकसान होगा, तो मैं क्या करूं?
4: मैंने आप कह रहे हैं कि अगर मैंने एक बार, आप कह रहे हैं कि मैंने किसी को पेशेंटली और प्यार से कई बार वो चीज समझाई लेकिन वो नहीं समझ रहा है तो मुझे गुस्सा करना पड़ता है उसको समझाने के लिए।
3: वो कह रहा है वरना वो हमको सीरियसली नहीं लेता,
4: वो मुझे सीरियसली ले उसके लिए मैं अपना नुकसान करूंगा।
3: तो ऐसे
4: तो
3: केस में
4: पूछना है ना,
3: ऐसे केस में क्या करना है जब सामने वाला काम ही नहीं कर रहा?
4: हमें ये डिसाइड करना है कि किसी को समझाने के लिए आप किसी का प्रॉफिट करने के लिए अपना नुकसान करेंगे?
3: नहीं,
4: आप किसी को हेल्प ही करेंगे लेकिन उसमें ऐसे करेंगे ना कि आपका नुकसान नहीं हो। आप अगर किसी को समझो धन के भी मदद कर रहे हैं तो आप ऐसे करेंगे ना जिसमें आपका, ऐसा थोड़ी ना कि किसी का घर चले पर आपका घर ना चले, ऐसा तो नहीं होता ना। आपका भी चले उसके बाद आप हेल्प करेंगे कि उनका भी चले, इसलिए पहले तो कभी भी वो मेथड हमें यूज ही नहीं करना जिसमें हमारा लॉस है, कभी भी नहीं। मैंने, हम ये नहीं कह सकते मैंने 10 बार प्यार से बोला था पर 11वीं बार तो मुझे गुस्सा करना ही पड़ा। तो जब भी आप करेंगे उसमें आपका नुकसान तो है, आपकी सोल पावर डिप्लीट होगी, आपके मन की स्थिति खराब होगी, उसका इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पर पड़ेगा, आपके रिश्तों पर पड़ेगा, तो वो चीज़ नहीं, अपने को वो परमिशन नहीं दे। दूसरा, आप उसको बहुत बार समझा रहे हैं, भले के लिए समझा रहे हैं, वो समझता है तो भी ठीक है, वो नहीं समझता है तो वो किसका लॉस है? उसका लॉस है,
3: लेकिन उससे मेरे काम को भी फर्क पड़ रहा है।
4: अगर आपके काम को फर्क पड़ रहा है, आप अगर वर्क प्लेस में है तो आप उस वर्क प्लेस से रिलेटेड जो राइट एक्शन है वो ले ले।
3: और कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला शायद मेरा परिवार वाला हो तो मैं ये नहीं कह सकता कोई बात नहीं उसका नुकसान हो रहा है, मेरे को क्या, क्यों मेरे को भी इफेक्ट करता है।
4: आप अगर परिवार वाले भी हैं तो भी आप किसी को इंस्पायर कर सकते हैं, आप एंकरेज कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, किसी की तकदीर तो नहीं लिख सकते ना। हम बच्चे को दिन में 50 बार कह सकते हैं पढ़ो पढ़ो, आप पढ़ेंगे अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपका भविष्य बनेगा, आप उसके लिए पढ़ तो नहीं सकते ना। हम सारा दिन यहाँ पर लोगों को कह सकते हैं अच्छा कर्म करो, अच्छे कर्म करने से आपका अच्छा भाग्य बनेगा, गलत नहीं करो उसके कॉन्सिक्वेंस आपको ही फेस करने पड़ेंगे, हम कह सकते हैं, हम उनके लिए अच्छा कर्म तो नहीं कर सकते, भगवान भी नीचे उतर करके नहीं कर सकता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड आपकी कहीं ना कहीं लिमिटेशन भी है, जब तक वो नहीं चाहता तब तक वो चेंज आ भी नहीं सकता है। सो यू गाइड एंड इंस्पायर, डू इट 100 times, डू इट डेली, पर देन ऑल्सो आप उनके लिए नहीं कर सकते, वो करना उनको ही पड़ेगा।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता, ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: हेलो माय मिर्ची दीवानों, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स जो अभी अभी शुरू हुआ है। सुबह सुबह का पहला चाय का सिप या फिर कॉफी की पहली पहली खुशबू और सुबह सुबह मिर्ची मॉर्निंग्स पर सबसे पहले मेरी आवाज। वैसे ऑनेस्टली यार, देसी एक्सपैट की लाइफ जो है वो किसी नेटफ्लिक्स के ड्रामा से कम थोड़ी ना है। सुबह 7 बजे उठकर हुडी पहन के बाहर निकलते हैं और फिर मम्मी से इंडिया में फेस टाइम पर बातें करते हैं और मम्मी का हर बार का सेम डायलॉग है, लगता है कुछ खाना वाना खाना बंद कर दिया है। और ये सबको हैंडल करने के बाद बॉस के ईमेल्स भी हैंडल करने पड़ते हैं और हाँ, इस सब के बावजूद लाइफस्टाइल और वेदर को भी झेलना पड़ता है। और ऐसे में अगर कोई बेस्ट फ्रेंड साथ में हो तो लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाती है। सेम उसी तरह अगर मॉर्निंग्स अच्छी हो तो पूरा दिन बन जाता है। और दिन बनाने आती हूँ मैं, बोले तो प्रिसिला, ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। तो फटाफट से मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 6472 4। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La
1: vieva la burga. Milci, burga. Hello? Hello?
2: Sir, very good evening. Thanks a lot.
1: हाँ बोलिए
2: सर. आई एम सो सॉरी सर, बट सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
1: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं क्या
2: बात है सर, आप तो सर पूरा बताइए
1: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
2: बता रहा सर, आपने उसमें से अभी तो कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
1: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
2: आई एम सो सॉरी सर, ऐसे कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
1: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
2: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
1: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
2: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
1: पागल पागल है क्या?
2: आप तो देने पड़ेंगे सर.
1: हेलो.
2: अब तो देने, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे.
1: कौन बोल रहा है? विपिन?
2: नहीं सर, तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
1: पागल के दिमाग खराब है क्या? पैसे देने पड़ेंगे,
2: अब तो फंस गए सर.
1: हेलो
3: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ. सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है.
1: उसके पैसों को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
3: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे. आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
1: मतलब ये पक्की बात है आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
3: हाँ जी. अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Inefficient.
7: Very complex.
8: Clumsy or
9: confusion ही confusion.
6: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business. Sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक. Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
10: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
11: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
12: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
13: Wow! Yahi to hai mera dream lehenga!
14: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
13: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
14: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
13: Miss India, aaj hi visit kare, 79 Middlesex Avenue, Islin.
15: तेरा क्या होगा कालिया?
16: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
15: अब मिर्ची खा.
17: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। यू ट्यून इन टू मिर्ची मॉर्निंग्स एंड एक्सक्लूसिवली यहाँ पर हम करते हैं टाइम ट्रैवलिंग। हिस्ट्री में आज के दिन काफी कुछ ड्रामे हुए थे। 1962 में दी आइकॉनिक मैरिलिन मनरो सैंग हर सुपर फेमस सल्ट्री वर्जन ऑफ हैप्पी बर्थडे मिस्टर प्रेसिडेंट टू जॉन एफ कैनेडी एट मैडिसन स्क्वायर गार्डन। सबसे पहले आज के दिन है वर्ल्ड आईबीडी डे, विच इज एन अवेयरनेस डेडिकेटेड टू पीपल लिविंग विद क्रोन्स डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। और आज के दिन है नेशनल मे रे डे इन द यूएस। ये ऑफिशियली अप्रूव्ड एक्सक्यूज है टू स्टेप आउटसाइड, सोक अप सनशाइन एंड थोड़ा सा वाइटामिन डी लेने का। वैसे आज के दिन इट्स ऑल्सो नेशनल डेविल्स फूड केक डे, विच साउंड्स इविल बट टेस्ट्स लाइक फॉरगिवनेस। एंड वे बैक इन 1536 एन बोलीन वॉज एग्जीक्यूटेड बाय किंग Henry VIII. It's proof that toxic relations existed long before Instagram came. और इसी बात पर मुझे फॉलो कर लो इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
3: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
4: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islington.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hola my people, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. This is Mirchi Mornings पर अब वेदर का हाल चाल जानने का टाइम. So listen up, right now it's around 70 degrees Fahrenheit and it's pretty sunny which sounds cute and innocent. लेकिन emotionally attached मत हो जाना वेदर से, क्योंकि afternoon आते आते temperature जो है वो climb करने वाला है. It's gonna go up to 95 degrees Fahrenheit. And not that you need that information today, but आज के दिन पिछले 24 घंटों की तरह zero precipitation है, यानी कि बरसात का नामो निशान नहीं है. It's going to be dry cleaning weather type का दिन. And later you'll get partly cloudy skies around 4 PM. लेकिन honestly those clouds are just there for moral support. So heads up, आज heat advisory भी है in effect till Wednesday evening, which means you gotta hydrate yourself like your life depends on it. Because honestly it kind of does. Carry your water, carry your sunscreen and please carry me, बोले तो Priscilla with you on Mirchi Mornings. और अभी फटाफट से मुझे follow करो Insta और X पर. मेरा handle name है Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp पे मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. फिलहाल चपक के बैठो यहीं पर, स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट.

0: Energy Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. दिस इज दैट टाइम ऑफ द शो जहाँ पर हम पता करते हैं अराउंड द वर्ल्ड क्या चल रहा है. सबसे पहले सानिया हैज बिकम द फर्स्ट वुमन इन द इंडियन एयरफोर्स टू अर्न द प्रेस्टीजियस कैटेगरी ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर रैंक, बेसिकली द हाईएस्ट इंस्ट्रक्शनल रेटिंग फॉर मिलिट्री पायलट्स इन इंडिया. शी ट्रेन एट द फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल इन चेन्नई एंड कम्प्लीटेड सुपर रिग्रस फ्लाइंग एंड ग्राउंड ट्रेनिंग. नंबर टू पर अ डीपली ट्रेजिक एंड सेंसिटिव केस आउट ऑफ इंडिया इन्वॉल्विंग ट्विशा शर्मा. ट्विशा वॉज फाउंड डेड जस्ट 5 months after her wedding and allegations are now being exchanged between both families. Her parents have accused her husband and in-laws for dowry harassment, while her mother-in-law has made separate claims regarding Trisha's career and family dynamics. And number three per, Aaron Rye, the Indian origin golfer from Wolverhampton, just became the first Englishman in 107 years to win the PGA Championship. He started golfing at the age of 4 and turned pro at 17. Also, fun fact, he's famous for using iron gloves during tournaments. And that's it for Mirchi Hour Ka 3 for this hour. Main hu Priscilla tumhare saath mein. Sun rahe ho Mirchi Morning. Sunte raho mujhe aur jaakar mujhe follow bhi kar lo. Mirchi Pris is my handle name on Instagram and X. That is MIRCHIPRIS. And WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033 647 244. Stay tuned and stay hot. Hey.

0: Milci.
1: Scabana, scabana, sacabana. Burga, burga. La birba, la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ।
2: हाँ जी, हेलो।
3: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है? सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है।
3: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 35/14A फर्स्ट फ्लोर नगर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सिक्योरिटी की वजह से आपका सनशाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
2: सिक्योरिटी के लिए सनशाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
2: मेरा सनशाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला है।
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
3: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
2: बी पॉजिटिव, दो दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा। और ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
3: तो मैं आपको, अरे मैडम,
2: सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल थोड़ी
3: जी। आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हमें? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
2: क्या
3: नहीं तो मैं, अरे मैडम, आप मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है। आप अगर मेरा मतलब है, अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
4: सुन। पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं,
3: दोबारा कॉल करेंगे। आप क्या वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
6: इट्स पटाक।
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: नमस्ते इस्लाम एंड सत श्री अकाल भाई और बहनों, आई एम सुजीत सिंह रनिंग फॉर कांग्रेस इन NJ12, ए हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग योर वॉइस टू वाशिंगटन। विजिट singforcongress.org एंड गेट एंगेज्ड।
10: June 2nd, 2026. Early voting dates, May 26th to May 31st. Sujit Singh is the change we need.
9: Paid for by Sujit Singh for Congress.
11: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
12: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
13: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
14: Wow! Yahi to hai mera dream lehenga!
15: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
14: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
15: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
14: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
16: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
17: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
18: Tera kya hoga, Kalia?
19: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
18: Ab, mirchi kha.
13: Radio Mirchi, it's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग. सो आईपीएल 2026 गेव अस वन ऑफ द स्वीटेस्ट मोमेंट्स एवर ड्यूरिंग द चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस सनराइज हैदराबाद क्लैश एट द एमए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई. आफ्टर द टीम फोटो, लेजेंडरी एमएस धोनी कैजुअली पिक्ड अप हिज ओन चेयर बिकॉज अपेरेंटली बीइंग अ क्रिकेट आइकॉन, कैप्टन कूल एंड एवरीवन्स इमोशनल सपोर्ट प्लेयर स्टिल डजंट स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग बेसिक चोर्स. बट देन यंग सीएसके प्लेयर उर्विल पटेल रश in and basically said nope, not on my watch, and insisted on carrying the chair himself. Internet immediately melted and said oh, because that's like our desi respect culture. Honestly, this is why everyone loves Dhoni, because unme koi superstar wala attitude nahi hai na. Wo kabhi aise nahi dikhate ki excuse me, do you even know who I am. To batao aise aur kaun se celebrities hai. Mera handle name hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp par mera number hai 9033647244. फटाफट अपने मैसेजेस ड्रॉप करो. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

इस गाने को गाया है फहीम अब्दुल्ला ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म चांद मेरा दिल से सुनते रहिए चांद मेरा दिल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, my birthday babies. Mirchi Mornings पर वो टाइम आ चुका है जहाँ पर हम बातें करते हैं तुम्हारे स्पेशल डे के बारे में. तो आज के दिन तुम अपना बर्थडे किन के साथ शेयर कर रहे हो? सबसे पहले ग्रैमी विनिंग सिंगर सैम स्मिथ is in your birthday squad. You also share your birthday with India's very own king of comedy, Veer Das. इसका मतलब ये कि तुम्हारा sarcasm level is 3000. And then rock music lovers legendary guitarist Pete Townshend was also born today. Basically, आज के दिन birthday squad is giving like super talented drama, humor and main character energy. And people born on 19th of May seem emotionally versatile. One minute वो deep thoughts में होते हैं, next minute वो cake attack करते हैं. और अगर ये बड़ा ही relatable behavior है तो मुझे बताओ, message करके या अपने birthday shoutouts भेज सकते हो. Insta और X पर मेरा handle है Mirchi Priz, that is MIRCHIBRIS. तुम चाहो तो मुझे cake भी भेज सकते हो, लेकिन no pressure. And also follow me there. And WhatsApp पर मेरा number है 9033647244. And अभी Mirchi इधर bangers का time है, stay tuned. Stay hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
0: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोपे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ, शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव।
3: तेरा क्या होगा कालिया?
4: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
3: अब मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Priscilla, it's hot.
1: Hey there, my gold lovers. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स. और अब हम पता करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर का आज का हाल क्या है.
2: राज जोस विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग. गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,540 $4,540 पर ट्राउंस के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं. गोल्ड के प्राइस अमेरिका में इंडिया से अबाउट 15% चीपर है. जी हाँ, आपने सही सुना, हिंदुस्तान से अमेरिका में गोल्ड के प्राइस सस्ते हैं. कैसे? आइए गोल्ड में इन्वेस्ट करते हुए राज ज्वेल्स के टीम मेंबर से समझें कि किस तरह से 15% गोल्ड का प्राइस अमेरिका में इंडिया से सस्ता है और गोल्ड में रिस्पॉन्सिबली इन्वेस्ट करें राज ज्वेल्स के साथ. थैंक यू. हैप्पी मॉर्निंग टू
1: यू. एंड देयर यू हैव इट, द लेटेस्ट रेट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. मैं हूं प्रिसिला, तुम्हारे साथ में. मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 mirchi. That's 9033 6472 4. Stay tuned and stay hot.
0: This gold update is brought to you by Raj Jewels, Kingdom of Jewels, where tradition meets style.

0: Mirchi.
1: Escabana, pues cabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga.
0: Mirchi, murga.
2: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
3: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
2: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
3: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है पूरी दिल्ली में। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
2: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
3: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
2: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
3: बोलो।
2: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
3: कौन सा?
2: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
3: अच्छा अच्छा।
2: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
3: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ,
2: वो पक्का हो जाएगा। मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
3: ओके, मैं ऐसे ही डाल दूं?
2: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
3: कुकर? हाँ कुकर तो है।
2: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
3: अच्छा।
2: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
3: सोडा,
2: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
3: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो बना, खाना बना रहा है?
2: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
3: मतलब उसको पकाऊं?
2: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
3: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा, रिस्क कौन लेगा, ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
2: या एक काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना, पकाना नहीं है।
3: नहीं नहीं कोई मैं रिस्क नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
2: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
3: चल जाएगी?
2: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
3: अबे कौन बोल रहा है तू?
2: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
3: अरे यार ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पक्का।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
8: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
9: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
10: Wow! Yahi to hai mera dream lehenga!
11: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
10: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
11: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
10: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
12: मॉर्गेज ढूंढने या रजिस्ट्रेशन और क्लोजिंग में खा रहे हैं मात, या प्राइसिंग और ऑफर में कोई बता नहीं रहा है हेल्प का हाथ?
13: नो वरीज, सुनिए रियल एस्टेट की बात डील मेकर आदर्श के साथ। रॉक द रियल एस्टेट फील्ड विद आदर्श लाल। अगर रियल एस्टेट में आपकी इंटरेस्ट है तो ये शो मस्ट है।
12: रियल एस्टेट की बात डील मेकर आदर्श के साथ एवरी ऑल्टरनेट थर्सडे बिटवीन 4 and 5 PM ओनली ऑन योर फेवरेट रेडियो मिर्ची 92.7 पर।
14: Oak Tree Road लो बेस्ट डायमंड ज्वेलरी कोसम सर्च इस्तनारा कृष्णा ज्वेलर्स मी एक्सक्लूसिव डायमंड स्टोर।
15: टॉप क्वालिटी नेचुरल सर्टिफाइड डायमंड्स, GIA सॉलिटेयर्स, नेकलेसेस, रिंग्स, मरियू स्टनिंग पेंडेंट्स, कृष्णा ज्वेलर्स, ओक ट्री रोड, ईसलिन।
4: मिर्ची फ्रेश माल।
16: Say wow! Hey guys, this is Varun Dhawan. Wow, that goes pow.
17: Swag, style और non-stop dancing के लिए तैयार हो जाओ.
16: Add it, turn it up and don't sit now. Just go wow.
17: Wow!
18: Say wow!

0: वाओ।
1: इस अपबीट ट्रैक को गाया है हार्डी संधू और किरण बाजवा ने। म्यूजिक कंपोज किया है तनिष्क बागची, रॉनी अजनाली और गिल मचराई ने। लिरिक्स लिखे हैं रॉनी अजनाली और गिल मचराई ने। फिल्म है जवानी तो इश्क होना है का ये सुपरहिट गाना सुनते रहिए ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
2: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला इट्स हॉट।
3: गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब हम सुनने वाले हैं सितारे क्या कहते हैं।
4: मिर्ची राशि जोन।
3: एरीज यानी मेष राशि, आज थोड़ा सा लो फील कर सकते हो बिकॉज मार्स जस्ट एग्जिटेड योर साइन, बट रिलैक्स, बॉस एनर्जी स्टिल इंटैक्ट है। जो न्यू प्रोजेक्ट्स शुरू किए थे वो टाइम पर मोनेटाइज हो सकते हैं। लकी कलर फॉर यू इज येलो, लकी नंबर इज 18। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, अटेंशन आ रहा है तुम्हारी तरफ वेदर यू लाइक इट और नॉट। सो मे बी टूडे डोंट वेयर दैट आई वोक अप लाइक दिस हुडी टू जूम मीटिंग्स। लकी कलर फॉर यू इज ब्राउन, लकी नंबर इज 44। जेमिनी यानी मिथुन राशि, दैट वियर्ड एंग्जाइटी वाली फीलिंग वो टेम्पररी है यार। सन इज मूविंग इनटू योर साइन सून एंड कंफ्यूजन का सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाला है। लकी कलर फॉर यू इज नियॉन ऑरेंज, लकी नंबर इज 9। कैंसर यानी कर्क राशि, लव वाइब्स आर स्ट्रॉन्ग टुडे। इफ यू लाइक समवन मे बी स्टॉप स्टॉकिंग देयर स्टोरी साइलेंटली एंड जस्ट से हाय, यूनिवर्स इज बेसिकली नजिंग यू टुडे। लकी कलर फॉर यू इज रोज गोल्ड, लकी नंबर इज 27। लियो यानी कि सिंह राशि, करियर स्टार्स आर शाइनिंग ब्राइटर देन योर रिंग लाइट टुडे। पीपल आर नोटिसिंग योर efforts, so walk into that meeting like background music is playing for you. Lucky color for you is bright red, lucky number is 3. Virgo yani kanya rashi, mind readers don't exist sweetheart. If you need help, ask for it. Today's lesson is communication before frustration. Lucky color for you is gray, lucky number is 31. And that's the first part of Rashi's own. Baki bacha second part lekar thodi si der mein main wapas aaungi. Tab tak ke liye tum lo ye mirchi tar bangers wala break. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

नीतू जट नू पसंद होगी गर्मी च ठंड होगी मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी तिरछी नजर तेरी आशकाली पंग होगी।

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Wow, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
5: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Wow, what a ride it's been. This is your girl Priscilla with you wrapping up Mirchi Mornings. तुम्हारा डेली का मॉर्निंग मैगजीन जो है ना वो अब एंड हो चुका है आज के लिए. जाने से पहले लेकिन तुम्हें बताती हूँ एक स्पाइसी सा अपडेट. अ वीडियो ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अराइविंग ड्यूरिंग हिज UAE विजिट हैज गॉन वायरल ऑनलाइन विद पीपल हिलेरियसली कंपेयरिंग द एंट्री टू अक्षय खन्ना's स्टाइलिश सीन फ्रॉम धुरंधर. बिकॉज बियॉन्ड द मीम्स एंड ड्रामेटिक एडिट्स द विजिट वॉज एक्चुअली फोकस्ड ऑन स्ट्रेंथ India UAE diplomatic and economic relationships. लेकिन social media being social media, important meeting गई sideline पे. Cool effects डालकर सबसे पहले swag वाला गाना लगा दिया और उसका meme बना दिया. Honestly, Indian memers can turn anything into cinema. चाहे वो wedding की entry हो, which is cinematic nowadays, office का resignation हो, which is very dramatic nowadays, and even entering Costco with AirPods on, feeling like you're the main character of this movie that's going on. कुछ लोग ना online comparisons ढूंढ ही लेते हैं और कभी-कभी बहुत ज़्यादा funny होते हैं, चाहे कितने भी ज़्यादा exaggerated क्यों ना हो. वैसे meanwhile, desi Instagram editors already added slow motion boss booted music and transition effects on Modi ji's video. Because subtlety to hamare desi life ka part hai hi nahi. And on that note, my lovely people, time for me to leave you for today with good vibes, good music and a lot of happy thoughts. You be good. Have a great day. Aur milungi tumhe kal, same time, same place, same frequency. Mera naam yaad rakhna Priscilla aur mujhe follow karna mat bhulna Insta aur X par. Mera handle name hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. And WhatsApp par mera number hai 9033647244. Abhi ke liye tada, stay tuned and stay hot.

0: बचपन में कोई भी काम करने से पहले हम ऐलान कर दिया करते थे, जैसे कि अगर जोक सुनाने की भी बात होती थी ना तो हम यही बोलते थे, एक चुटकुला सुनाओ।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. And वाकई में यार, मतलब बचपन में एक तो हम कहां कहां से तरह तरह के जोक्स उठा के लेकर आया करते थे, और एक ये डायलॉग, जोक सुनाने से पहले ये तो फर्ज बनता था, एक चुटकुला सुनाऊं। आज तो कॉमेडी कहां से निकल जाती है पता ही नहीं लगता, लेकिन तब हमें इजाजत लेने की इतनी ज्यादा आदत थी कि चुटकुला सुनाने के लिए भी हम पहले इजाजत लिया करते थे। इट्स जस्ट लाइक, मैम मे आई कम इन, हाँ बेटा कम इन, वैसे ही चुटकुला सुनाओ, हंसनाओ ना, तो हम सुनाना शुरू करेंगे जब तक कोई हाँ नहीं बोल देता। एंड यू नो, इससे मुझे एक और बात बड़ी प्यारी सी याद आई, और वो ये कि एट दैट टाइम आपके पास जोक्स के लिए या तो स्कूल हुआ करता था, दोस्त हुआ करते थे, या आपके कजन्स आपको जोक्स बताया करते थे। ये सोशल मीडिया या फिर यू नो गूगल तो था ही नहीं कि आपको जोक्स पता होते कहीं से, आप कहीं से टीप लो किसी को इम्प्रेस करने के लिए या हंसाने के लिए, तो एट दैट टाइम ये लोग हुआ करते थे। एंड आई रिमेम्बर नाउ कि मैंने एक जोक बुक खरीदी थी, हाँ एक जोक बुक जिसके अंदर जोक्स पे जोक्स लिखे हुए थे, और फिर वो जोक्स जो थे मैं पढ़ने के बाद समझने की पहले कोशिश किया करती थी, उसके बाद फिर उसको सुनाने की कोशिश किया करती थी, लेकिन सच बताऊं तो सारे जोक्स एक साइड और हाथी और चींटी के जोक्स एक साइड, बेस्ट जोक्स ऑफ दोज टाइम्स। इनफैक्ट आज भी वो जोक्स अगर कोई सुना देता है ना तो भी हंसी आ जाती है। चलो जी, इसी बात पर मिड्डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हुई आपसे कहती हूँ, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milchi.
1: Iskra bana, uska bana, saka bana.
2: Ram bana.
1: Murga, murga. La vieja bala murga.
2: Milchi, murga.
3: Hello.
4: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
3: हाँ जी, हाँ जी।
4: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
3: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
4: होल्ड कर रहा हूँ।
3: हाँ जी, हेलो।
4: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
3: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
4: कनेक्ट नहीं हो पाता है? सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
3: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें।
4: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
3: है 3K 5/14A फर्स्ट फ्लोर नगर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
4: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सिक्योरिटी की वजह से आपका सनसाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
3: सिक्योरिटी के लिए सनसाइन क्यों?
4: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
3: मेरा सनसाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला है।
4: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
3: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
4: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
3: बी पॉजिटिव, दो दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
4: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
3: राहुल शर्मा। ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
4: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
3: आपसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल।
4: सुमन जी, आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
3: क्या
4: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है। आप अगर, मेरा मतलब है, अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा।
5: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
3: नहीं,
4: दोबारा कॉल करेंगे। आपका वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
10: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
9: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
11: मैनू नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है, जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे।
12: आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मामा।
13: अरे मुझे कोई ट्रैक करे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
10: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिसे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
14: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
15: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
8: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
10: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
16: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
10: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
17: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
10: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
18: एक ही होता है।
10: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: 90s बॉलीवुड की फिल्मों के टाइटल्स सिर्फ टाइटल्स नहीं थे बॉस, पूरे एसेज हुआ करते थे।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Zara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And those were the days जब fashion ही लंबी लंबी movies के titles का होता था। And no one dared to release a movie जिसका one word नाम हो। और यही वो movies हैं जो आज भी हमें डमशराज खेलने में बड़ा मदद करती है और हमारी टीम को जिताती है। And I've decided कि मैं आपको कुछ ऐसी ही फिल्मों से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी आज जिनके नाम या तो हमने डमशराज में सुने हैं, नहीं तो आगे ये नाम हमें डमशराज जीतने में मदद करेंगे। जिस देश में गंगा रहता है, ये मूवी याद है आपको? मुझे डेफिनेटली याद है। गोविंदा, सोनाली बेंद्रे और रिंकी खन्ना की ये मूवी, वो दौर था जब गोविंदा की फिल्में फ्लॉप हो रही थी और ये फिल्म इस लिस्ट में एक और नाम था। ये महेश मांजरेकर डायरेक्टेड पहली कॉमेडी फिल्म थी, लेकिन शुक्र है इसके फ्लॉप होने के बावजूद उन्होंने कॉमेडी फिल्म्स बनाने का आइडिया ड्रॉप नहीं किया और ऐसे ही ये फिल्म हमारे डमशराज की लिस्ट में शामिल हो गई। और अगर अभी तक आपने इस फिल्म का इस्तेमाल नहीं किया है ना, तो मैं तो कहती हूँ अगली बार के लिए डेफिनेटली याद रखना इस फिल्म का नाम। आओ चलो इसी बात पर आपको बिग बॉस, ओहो आई मीन यस बॉस का ये प्यारा सा गाना सुनाती हूँ, कुमार सानू एंड अलका याग्निक की आवाज में। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है.
3: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
2: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
4: नो
5: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब. इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
1: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
6: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
1: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन. Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
7: अब मिर्ची खा.
9: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: 92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़के मुझे नहीं देखा? Who is he?

0: आपने अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है? इस फिल्म का नाम तो सुना ही होगा।
1: सारा जमाना है सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, हम मिलेनियल्स ने जब जब डमशराज खेला है, इस फिल्म के नाम का इस्तेमाल डेफिनेटली किया है। और जो सवाल हम पूछते आ रहे हैं डमशराज में, वो यही है कि ये फिल्म एग्जिस्ट भी करती है क्या? एंड द जवाब इज यस, करती है। और मैंने सोचा है कि मैं आपको डमशराज की वो फिल्मों के टाइटल से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी आज, जिन पर आज तक हमने सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगाया है। दिस फिल्म स्टार्ड नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी एंड स्मिता पाटिल। और ये एक आर्ट फिल्म थी जिसमें बात नसीर साहब के कैरेक्टर के गुस्से को लेकर की जा रही थी, जो गुस्सा करते करते अपने गुस्से की वजह से समझता चला जाता है और उसे ये पता लगता जाता है कि जो गुस्सा वो पहले गरीबों पर करता था, वो उसे डिजर्व नहीं करते हैं, डिजर्व तो सिर्फ अमीर करते हैं। और इसी चक्कर में अल्बर्ट पिंटो के जो गुस्से का मकसद और मतलब था वो बदल जाता है, लेकिन गुस्सा वो चलता चला जाता है। इसी के साथ बॉस, अब मदहोश होने का टाइम आ गया है, क्योंकि कमिंग अप कुमार सानू की आवाज में ये गाना फ्रॉम द फिल्म कभी हाँ कभी ना। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: इनके नाम में भी नवाज है और ऊपर वाले ने भी इन्हें टैलेंट से खूब नवाजा है. आई एम टॉकिंग अबाउट नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिनका आज बर्थडे है.
1: सारा जमाना है सारा का दीवाना.
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. और यूपी के बुधाना में पैदा हुआ एक लड़का जिसका नाम था नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो कि एक किसान फैमिली को बिलोंग करता था. किसको पता था कि वो लड़का जब बड़ा होगा तो बॉलीवुड में बड़ा बड़ा नाम खेल जाएगा एंड दी नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहलाएगा. हमें ये तो बताए कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जो सक्सेस स्टोरी है उसमें काफी सारे टफ टाइम्स आए हैं. लेकिन आपको पता है कि एक्टिंग ज्वाइन करने से पहले उन्होंने बैचलर ऑफ साइंस एंड केमिस्ट्री किया था एंड उन्होंने एज अ केमिस्ट भी काम किया था. लेकिन वो अपनी जॉब से ना बहुत ज्यादा खुश नहीं थे. उनको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ क्रिएटिव करना था, जिसके लिए वो दिल्ली मूव कर गए और फिर उन्होंने NSD ज्वाइन किया. और NSD में क्वालिफाई करने के लिए आपको पता है उन्होंने एक दिन के अंदर 10 ड्रामास में पार्टिसिपेट किया एंड ये भी तब जब वो रात में एज अ वॉचमैन काम किया करते थे. यानी कि रात में वॉचमैन की ड्यूटी और दिन में ये 10 ड्रामास का काम. तब जाके उन्हें NSD के अंदर दाखिला मिला और 1996 में ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम NSD. अब आपसे बात करते करते ना मुझे एक एडवर्टाइजमेंट याद आ रहा है. याद है आपको? मतलब एक झलकी सी याद आ रही है. प्रोडक्ट मुझे क्लियरली याद नहीं है कि नवाज जो है वो उस एड के अंदर चलते हुए जा रहे हैं एंड देयर इज दिस वॉचमैन हु स्लीपिंग अपनी ड्यूटी टाइम पर. लेकिन नवाज उन्हें कुछ कहते नहीं है. अब समझ आया कि वो जो एड है उसका रेलेवेंस क्या है, क्योंकि उन्होंने खुद वो काम किया है और वो जानते हैं कि ये जो इंसान अभी ड्यूटी पर सो रहा है ना, इसने दिन में क्या क्या पत्थर तोड़े होंगे. इसीलिए कहते हैं कि ऑलवेज बी काइंड टू पीपल, बिकॉज आपको नहीं पता है कि उनकी बैक स्टोरी क्या है. विशिंग दिस अमेजिंग टैलेंटेड एक्टर अ वेरी हैप्पी बर्थडे. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Mirchi.
1: Escabana, pues cabana, sacabana. ¡Cabana! ¡Murga, murga! ¡La vieja la murga!
0: ¡Mirchi, murga!
2: ¿Aló? ¿Aló?
3: Sir, very good evening, man. Thanks a lot.
2: ¿Bolia?
3: Sir, I'm so sorry, sir, but... सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
2: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं, क्या
3: बात है? सर आप तो सर पूरा बता रहे
2: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
3: सर आपने उसमें से अभी तक कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
2: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
3: आई एम सो सॉरी सर, ऐसी कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
2: नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो,
3: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
2: नहीं, मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
3: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
2: पागल पागल है,
3: अब तो देने पड़ेंगे सर.
2: हेलो,
3: अब तो देने, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे.
2: कौन बोल रहा है? विपिन?
3: नहीं सर, से बोल रहा. तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
2: पागल है क्या? दिमाग खराब है क्या? पैसे देने पड़ेंगे,
3: अब तो फंस गए सर.
2: हेलो
4: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ. सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है.
2: उसके पैसे को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
4: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे. आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
2: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं
4: जी? अरे सर, रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर. मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची. It's hot.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
8: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
7: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन. Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
8: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
9: जय गुरुदेव. गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोपे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण. शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ. रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ. शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति. अधिक जानकारी के लिए 7323578200. जय गुरुदेव.
10: कुछ आवाजें सिर्फ गानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
11: लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
12: बैक टू बैक गाना सुनेगा.
11: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: दिल से है ये आज भी किसान, लेकिन करते हैं ये एक्टिंग का काम. आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन द बर्थडे बॉय नवाजुद्दीन सिद्दीकी.
1: सारा जमाना सारा का दीवाना.
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. And well, in an interview, नवाजुद्दीन ने खुद बात कही है कि सिंस वो एक फार्मर्स फैमिली को बिलोंग करते हैं तो उन्होंने आज भी खेती बाड़ी छोड़ी नहीं है. जब भी वो कभी अपने गांव जाते हैं ना तो वो मेक श्योर करते हैं कि वो भी अपने खेत को कल्टिवेट करें और वहां पर काम करें. इसके पीछे की एक बड़ी खूबसूरत वजह बताई उन्होंने. जिस तरीके से आप और मैं ऑन अ डेली बेसिस कुछ एक ऐसा काम करते हैं जिससे कि हमें ऊर्जा मिले, जिससे कि हमें कामनेस मिले, यही चीज उन्हें अपनी खेती बाड़ी से मिलती है. और धरती माँ से टच में रहकर ना वो बहुत काम फील करते हैं, विच इज अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल थॉट. क्योंकि ऑफकोर्स जब आप धरती से लगे रहोगे, जुड़े रहोगे, तो आप कितने हम्बल भी रहोगे नहीं. और अगर बात की जाए नवाजुद्दीन सिद्दीकी की हम्बल जर्नी की, तो इन्होंने शुरुआत की थी मुन्ना भाई MBBS से. आई डोंट नो आपने ये बात नोटिस करी है कि नहीं करी है, हमने सब ने मुन्ना भाई MBBS तो देखी है ना. उसके अंदर वो सीन याद है आपको, जब सुनील दत्त साहब बॉम्बे पहुंचते हैं अपनी वाइफ के साथ और प्लेटफॉर्म पर ये लोग उतरते हैं तो एक पॉकेट मार आ जाता है और उसको वो पकड़ लेते हैं. वो जो पॉकेट मार था ना, वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी है. कहां से कहां तक आ गया यार ये बंदा. सच एन इंस्पिरेशनल सक्सेस स्टोरी विच क्लियरली स्पीक्स ऑफ द फैक्ट कि लगे रहो मुन्ना भाई तो पहुंच ही जाओगे अपनी मंजिल पर. फ्रॉम मुन्ना भाई टू हॉलीवुड. क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं, हॉलीवुड में भी काम किया है. 2016 में देव पटेल की एक मूवी आई थी लायन, उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी एक रोल अदा किया है. वेल, हिज टैलेंट इज सच कि वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भी अननोटिस नहीं जाता है. विशिंग हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे टुडे. यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: गोल्ड प्राइसेस आर राइजिंग, इन्वेस्ट

0: in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन.
4: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
5: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
4: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
6: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
4: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है.
4: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: साधना सरगम, अनुराधा श्रीराम, उस्ताद सुल्तान खान और राकेश पंडित की आवाज में दिस गाना फ्रॉम द फिल्म मकबूल इज अ ब्यूटीफुल पीस.
2: मिर्ची 90s कैसेट.
1: गुलजार साहब का लिखा हुआ ये गाना कैसे चूक सकता है अपने लिरिक्स के वादों से. यार ये गाना म्यूजिक के मामले में तो कमाल है ही है, बिकॉज यहाँ पर हम विशाल भारद्वाज और गुलजार साहब की जोड़ी की बात कर रहे हैं, जहाँ लिरिक्स गुलजार साहब के हैं और विशाल भारद्वाज की म्यूजिक है, वो कभी फेल नहीं हो सकता. तो म्यूजिक तो इस गाने का कमाल है ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा कमाल मुझे गुलजार साहब के बोल लगते हैं. ये कॉम्प्लीमेंट इतनी खूबसूरती से करते हैं ना इस म्यूजिक को कि क्या ही बताऊं. हालांकि ये जो लेख है, ये पूरा का पूरा लिरिक्स का जो लेख है, दैट is quite a lot inspired by Amir Khusro ki writing, who is the father of Qawwali, by the way. And ye gana jo hai, ye basically set hai on a shaadi ka ghar, jahan par ek dulhan ke baare mein baat ki ja rahi hai ki kaise wo sharma rahi hai, kaise wo itla rahi hai, apne piya se milne ki chaah rakh pa rahi hai. Aur iske lyrics agar aap gaur se suno na, to aapko ye lyrics bahut pasand aayenge, because of the reason ki is gaane mein sabse zyada highlight hota hai Jhinmin Jhini, hai na. Lekin jab lyrical part aata hai na, to aksar hum idhar udhar ho jaate हैं या म्यूजिक में खो जाते हैं. मगर मैं आपसे कहूंगी कि अब जब मैं ये गाना चलाऊंगी ना आपके लिए, तो इसके लिरिक्स को गौर से सुनना, जिसका एक पार्ट मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वेयर इन इट इज सेड कि हिना में छुपा के जिया रख दिया. यानी कि जब दुल्हन मेहंदी लगाती है तो उस मेहंदी के अंदर दूल्हे का नाम छुपा हुआ होता है ना, तो उससे रेलिवेंट ये बात कही गई है कि हिना में छुपा के जिया रख दिया, हथेली पे जलतू दिया रख दिया. ओए होए, रोशन रोशन पैरों से खुद ही शर्माऊं. यानी कि रोशन रोशन पैर तब जब वो मेहंदी के रंग से रोशनी दे रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, निखर रहे होते हैं. मैं इस पग उस पग डोलू, जाऊं ना जाऊं. यानी कि दुल्हन जो है वो ये सोच रही है कि यार ये जो मेरे मेहंदी के पैर हैं, मैं इनको इधर उधर रखती हुई दूल्हे से मिलने के लिए जाऊं या ना जाऊं. बस अब मैं ये गाना चलाऊं ताकि आप इस गाने को गौर से सुनो, एंजॉय करो, बिकॉज नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू से हम है रही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते. बाकी आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा और मुझे यहाँ के अलावा ढूंढ लीजिएगा ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल, विच इज मिर्ची सारा. कमिंग अप दिस ट्रैक फॉर यू, यू स्टे ट्यून टू मिर्ची, इट्स हॉट.

0: मैं ये तो हम जानते हैं कि किशोर कुमार ने म्यूजिक की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो अपने ग्रोइंग अप इयर्स में जब वो संगीत सीखना चाहते थे तो क्यों नहीं सीख पाए? सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था और कैसे शेयर किया था।
1: चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। लेकिन हकीकत यह है कि जवानी में प्यार कम मिलता है और मुसीबतें ज्यादा। वो ऐसे कि मेरी जवानी ने चाहा कि मैं बहुत बड़ा क्लासिकल सिंगर यानी शास्त्रीय गायक बनूं, मगर चूंकि मेरे पिताजी वकील थे और उनकी कचहरी में संगीत का कोई स्थान नहीं था, इसीलिए मैं संगीत की कोई शिक्षा नहीं ले पाया।
0: भाई बिना संगीत की शिक्षा के ये ऐसे तोप थे, शिक्षा ले लेते तो पता नहीं क्या ही ये तोप बड़ूम बड़ाम कर देती। और पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, saka bana. Rabana. Burka, burka. La vieth bala burka. Mirchi burka.
2: Hello.
3: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ।
2: हाँ जी, हेलो।
3: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है, सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है।
3: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 3rd K 35/14A 1st floor। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें, सिक्योरिटी की वजह से आपका सनशाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
2: सिक्योरिटी के लिए सनशाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
2: मेरा सनशाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला है।
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
3: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
2: बी पॉजिटिव, 2 दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा। ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
3: तो मैं आपको, अरे मैडम
2: से डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल थोड़ी
3: जी। आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हमें? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
2: यार
3: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है, आप अगर मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
4: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया, रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है। अब आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं,
3: दोबारा कॉल करेंगे। आप क्या वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
5: इट्स पटाक।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
8: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
9: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
10: द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑफर्स वेरियस डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस इन फार्मेसी टेक, मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग, EKG एंड फ्लेबोटमी, मेडिकल असिस्टेंट एंड मेनी मोर इन डिमांड हेल्थ केयर करियर्स।
9: गेट क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड जॉब असिस्टेंस एट द मोस्ट रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सेंटर्स। ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड ऑनलाइन एंड ऑन कैंपस। फॉर एनरोलमेंट कॉल 9088222002 और विजिट aimseducation.edu।
11: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
12: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
13: Tera kya hoga, Kalia?
14: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
13: Ab, mirchi kha.
15: Radio Mirchi, it's hot.
0: Purani Jeans with Charu, only on

0: पिल्लो, ये तो हमको पता ही नहीं था।
1: मिर्ची, सुन रहे हैं आप? पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये बात कि बॉबी फिल्म, जो ऋषि कपूर डिंपल कपाड़िया की डेब्यू फिल्म थी, उसमें मेन रोल बॉबी के रोल के लिए नीतू सिंह का भी ऑडिशन हुआ था, वो सिलेक्ट नहीं हुई, डिंपल कपाड़िया सिलेक्ट हो गई। भाई वैसे नीतू जी एज अ चाइल्ड एक्टर काम करती थी, बट ये बड़े होने के बाद वाला जो डेब्यू होता है वो फ्यूचर हस्बैंड के साथ तो नहीं हो पाया, लेकिन उसी साल फ्यूचर जेठ जी के साथ इनका फिल्मी डेब्यू हो गया 1973 की ही फिल्म रिक्शा वाला में। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ और ऋषि कपूर डिंपल कपाड़िया की जोड़ी वाला एक और गाना सुन लेते हैं। काफी सेंसुअस हॉट गाना है ये। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: मॉर्गेज ढूंढने या रजिस्ट्रेशन और क्लोजिंग में खा रहे हैं मात, या प्राइसिंग और ऑफर में कोई बता नहीं रहा है हेल्प का हाथ?
4: नो वरीज, सुनिए रियल एस्टेट की बात डील मेकर आदर्श के साथ। रॉक द रियल एस्टेट फील्ड विद आदर्श लाल। अगर रियल एस्टेट में आपकी इंटरेस्ट है तो ये शो मस्ट है।
3: रियल एस्टेट की बात डील मेकर आदर्श के साथ एवरी ऑल्टरनेट थर्सडे बिटवीन 4 एंड 5 पीएम ओनली ऑन योर फेवरेट रेडियो मिर्ची 92.7 पर।
5: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगा, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
5: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन। Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
7: Tera kya hoga, Kalia?
8: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
7: Ab mirchi kha.
9: Radio Mirchi, it's hot.
1: It's 1:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
0: Purani jeans. With Charu. Only on.

आपने जॉनी मेरा नाम फिल्म का वो गाना देखा है, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इट्स अ फन सॉन्ग जहाँ पे देवानंद हेमा मालिनी को सॉर्ट ऑफ टीज कर रहे हैं, उनके घर में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग खिड़कियों के द्वारा। उस घर में इतनी खिड़कियां दिखाई गई हैं भाई, इतनी खिड़कियां हैं, ऐसा सोच के लगता है कि ए वुमन लाइक हेमा मालिनी इज लिविंग देयर, इट इज सो अनसेफ। हालांकि खिड़कियां बंद करने के तरीके हैं, विंडो ब्लाइंड्स हैं, कर्टन्स हैं, खिड़की पूरी तरह से बंद हो जाए ऐसा भी तरीका है, लेकिन इतनी सारी खिड़कियां, इतनी सारी छिपकलियां घुसाती होंगी गर्मियों में, चूहे तक घुस सकते हैं। अरे चूहे क्या, डॉग्स कैट्स कुछ भी आ सकता है, कबूतर, इतनी खुली खुली खिड़कियां हैं, वो मेंटेन करनी कितनी मुश्किल हो, और रात को सोने से पहले कितनी खिड़कियां बंद करोगे। अगली बार वो गाना देखे तो ध्यान से देखे और काउंट भी करना कितनी खिड़कियां हैं, मैं भी काउंट करूंगी अगली बार। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
4: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
2: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155.
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: अच्छा गुरु, जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा?
1: जवाब? अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप सूझ जाता है। कहना अनुराधा।
2: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु।
3: अरे तेरी की भूला।
1: कहना कहना
0: क्या?

So the other day, I watched this film called Jhooti and I fell in love with Rekha once again. मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ. ये ना मिड 80s की फिल्म है जब रेखा अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रख रही थी, तो वो बहुत फिट लग रही हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं. मुझे तो उनकी ड्रेसिंग सेंस भी इस फिल्म में बहुत अच्छी लगी. तो इसमें ना उनको घर में सबसे छोटी दिखाया गया है, वो बहुत पैम्पर्ड भी है और उनको झूठ बोलने की आदत है. इस फिल्म में अमोल पालेकर, राज बब्बर, ये लोग हैं. और ऐसी क्यूट हार्ट वार्मिंग सी फिल्में किनकी होती हैं? ऋषिकेश मुखर्जी की. अगर आपने फिल्म नहीं देखी प्लीज देखें. और अभी हम गाना सुनेंगे उस फिल्म का जिसे बेस्ट फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था और उसमें रेखा को उनकी परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड. खूबसूरत फिल्म का गाना पुरानी जीन्स पर. मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए मिर्च.

पतित था, लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गतित मंग था, खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी

भाई ज्यादातर लोग सुप्रिया पाठक जी को खिचड़ी टीवी शो में उनके हंसा के रोल के लिए याद रखते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। जी वही कि मेरा नाम हंसा और प्रफुल व्हाट इज एंड माय फेवरेट, मैं तो थक गई बाई चाप। नो वंडर दिस परफॉर्मेंस, दिस रोल इज माइंड ब्लोइंग। लेकिन सुप्रिया पाठक जी ने इतनी ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस दी हैं इन वैरायटी ऑफ रोल्स। आपको पता है ना, ये फेमस एक्ट्रेस दीना पाठक जी की डॉटर हैं और इनके फादर बलदेव पाठक यूज्ड टू मेक ड्रेसेस फॉर एक्टर्स लाइक राजेश खन्ना एंड दिलीप कुमार। Anyway, coming back to her performances, इनको इनकी पहली फिल्म 1981 की कलयुग के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था और उसके बाद की जो इनकी फिल्म थी उसके लिए भी उनको यही अवार्ड मिला था। उसी फिल्म का हम यहाँ गाना सुनेंगे, फिल्म का नाम बाजार। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
1: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
2: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
1: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
2: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
1: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना। हाँ
2: बोलो।
1: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
2: कौन सा?
1: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
2: अच्छा अच्छा।
1: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
2: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ,
1: वो पक्का हो जाएगा। मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
2: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूँ?
1: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
2: कुकर तो है।
1: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
2: अच्छा
1: 4 लीटर में आप, मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
2: सोडा,
1: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
2: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो बना, खाना बना रहा है?
1: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
2: मतलब उसको पकाऊं?
1: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
2: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा रिस्क, कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
1: यह काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना है, पकाना नहीं है।
2: नहीं नहीं कोई मैं सर्विस में लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
1: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
2: चल जाएगी?
1: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
2: अबे कौन बोल रहा है तू?
1: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है, घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
2: जरा ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
8: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
9: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्केटवे। आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मां स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिरजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 7323578200। जय गुरुदेव।
10: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
11: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
12: Listener MI, back to back gana sunega.
13: Back to back gana sunega.
12: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Purani Jeans with Charu. Only on.

1975 की फिल्म जख्मी का ये गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आपको पता है ये फिल्म ताहिर हुसैन साहब ने प्रोड्यूस की थी, जो आमिर खान के फादर थे। और आमिर खान की दो फिल्मों का नाम पहले जख्मी होने वाला था, एक तो उनकी 1998 की जो गुलाम फिल्म थी वो, और फिर 2012 की तलाश, लेकिन किसी वजह से फिर जख्मी नाम नहीं रखा गया। ऐसे नाम में क्या रखा है, कहा था विलियम शेक्सपियर ने, गुलाब को आप किसी भी नाम से पुकार लें, गुलाब की खुशबू तो वैसी ही रहेगी ना। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगी @rj.charu इस नाम से। यहाँ पे नाम में काफी कुछ रखा है। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: It's 2 p.m. Mirchi Time Check brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price. It's 2:30 p.m. Mirchi Time Check brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज.

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
3: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

1976 का मास्टरपीस सॉन्ग। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और ये गाना है कभी कभी फिल्म का टाइटल ट्रैक। जी हाँ बहनों भाइयों, उस साल गीत माला में ये गीत पायदान नंबर एक पर था। इस गाने के लिए खयाम साहब को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, साहिर साहब को बेस्ट लिरिसिस्ट और मुकेश साहब को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। अच्छा, खयाम साहब ने ना ये गाना, इस गाने की जो ट्यून है, ये 50s की किसी फिल्म के लिए कंपोज की थी। वो गाना रिकॉर्ड भी हुआ था, गीता दत्त एंड सुधा मल्होत्रा उन्होंने ये गाना गाया था, लेकिन किसी वजह से वो फिल्म बन नहीं पाई या रिलीज नहीं हुई, तो वो गाना खयाम साहब के पास पड़ा हुआ था। तो जब ये कभी कभी फिल्म का म्यूजिक बन रहा था, उन्होंने यश चोपड़ा को ये ट्यून सुनाई, चोपड़ा साहब को पसंद आ गई, साहिर साहब के लिरिसिस्ट इस पे फिट कर दिए गए, मुकेश और लता मंगेशकर ने इसे गाया और ये मास्टरपीस बन गया। तो सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

भाई एक शायर हैं हसन कमाल साहब, उनकी मैं गजल पढ़ रही थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। वो कहते हैं, सर उठाकर न कभी देखा कहाँ बैठे थे, गिरती दीवार का साया था जहाँ बैठे थे। सब थे मसरूफ अंधेरों की खरीदारी में, हम सजाए हुए शमाओं की दुकान बैठे थे। यही शोहरत का सबब होंगे ये मालूम न था, हम छुपाए हुए जख्मों के निशान बैठे थे। लोग तो बुझते चिरागों के धुएं से खुश थे, हम ही बेकार जलाए हुए जहां बैठे थे। मैं कदा शराब खाना, मैं कदा और भी तन्हाई का सामान निकला, हम की तन्हाई से तंग आके यहाँ बैठे थे। हसन कमाल साहब ने बहुत सुंदर फिल्मी गीत और गजल भी लिखे हैं, तो उनकी लिखी ये खूबसूरत गजल सुन लेते हैं एतबार फिल्म से। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Oh no!
4: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
4: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
6: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
4: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
7: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
4: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
8: एक ही होता है.
4: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: आपको पता है 80s में अमृता सिंह को मजाक में मर्द सिंह भी कहा जाता था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये क्या सीन था, कौन उन्हें ऐसे बुलाता था, किसने उन्हें ऐसा नाम दिया, सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: ये मर्द सिंह का जो टाइटल मुझे दिया गया ये मैंने नहीं दिया, ये एक बार टिंपू कपूर ने मुझे दिया था। वो मजाक में मैंने उसे कुछ नामर्द कह दिया था, तो उसका रिटेलिएशन था कि तुम तो मर्द सिंह हो, फिर ऐसा कुछ था, एक मजाक सा हो गया था और वो एक ऐसी इमेज रह गई थी कि जो रह गई।
0: चिंपू कपूर यानी कि राजीव कपूर, रणधीर कपूर, ऋषि कपूर के सबसे छोटे भाई, इन लोगों ने 80s में आई थिंक एक दो फिल्मों में साथ में काम किया था। चलिए फिलहाल यहाँ गाना सुनते हैं जो अमृता सिंह और राज बब्बर पे पिक्चराइज्ड है, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: It's 3:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
4: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
6: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
7: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है, जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे.
8: आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मामा.
9: अरे मुझे कोई ट्रैक करे, मुझे बहुत अच्छा लगता है. प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा.
10: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं. Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है. काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक. Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
4: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
11: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
0: Purani Jeans with Charu, only on

0: वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस में से एक थी स्मिता पाटिल जी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। उनको ज्यादातर उनकी 8 फिल्म्स के लिए जाना जाता है जिसमें उन्होंने बहुत ही बोल्ड वुमेन सेंट्रिक रोल्स प्ले किए। इस बारे में सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने एक बार क्या शेयर किया था।
1: मेरे भाग्य की बात है कि जब से मैंने हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू किया, मैंने अच्छी फिल्में की हैं। अच्छी फिल्मों से मेरा मतलब ये है कि उसमें जो स्त्रियों के रोल मैंने किए थे, वो औरतें हिंदुस्तान की ऐसी औरतें थी जिनके बारे में जो सच है वो इन फिल्मों में कहा गया था। जो रूरल बैकग्राउंड की हो या अर्बन बैकग्राउंड्स की हो, जैसे भूमिका थी, जैसे मंथन थी, जिसमें हिंदुस्तान की जो सिर्फ सफरिंग औरत ही नहीं, लेकिन उसका जो इनर स्ट्रेंथ है, जो उसकी कष्ट करने की जो ताकत है या परिस्थितियों से झगड़ने का जो उसका एक जुनून है, वो सब बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया था।
0: वेल, उन्होंने कमर्शियल फिल्मों में भी काम किया है, याद है नमक हलाल, शक्ति, ऐसी फिल्में। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
4: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
5: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
6: Listener mein back to back gana sunega.
7: Back to back gana sunega.
8: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

दोस्तों ट्यूसडे का काम होता है बस लाइफ को थोड़ा सेटल कर देना। मंडे ने जो झटका दिया ट्यूसडे आके बोलता है कि ठीक है भाई अब सांस ले लो। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और अगर आज का दिन ड्रामेटिक नहीं था तो ऑनेस्टली दैट इटसेल्फ इज अ विन, क्योंकि ट्यूसडे ना एक्साइटमेंट के लिए नहीं बैलेंस के लिए होता है। थोड़ा काम, थोड़ा रूटीन, थोड़ा नॉर्मल सी। तो आप भी बताओ दोस्तों, आज का दिन हैवी था या मैनेजेबल? डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI और आपकी ट्यूसडे की वाइब शेयर करो। और आपकी ट्यूसडे की वाइब को मैच करने वाला ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iscabana, puscabana, sacabana.
2: Rambala.
1: Murga, murga. La vieja la murga.
2: Mirchi, murga.
3: ¿Aló? ¿Aló?
4: Sir, very good evening, my bank support.
3: ¿Bolía?
4: Sir, I'm so sorry, sir, but... सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
3: बनवाया था भैया, क्या हो गया?
4: सर आप तो सर पूरा बता रहे
3: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
4: बता रहा सर, आपने उसमें से अभी तक कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
3: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
4: आई एम सो सॉरी सर, ऐसी कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
3: नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
4: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
3: नहीं, मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
4: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
3: पागल पागल
4: है, आप तो देने पड़ेंगे सर.
3: हेलो.
4: अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे. अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे.
3: कौन बोल रहा है? विपिन?
4: नहीं सर, से बोल रहा. अब तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
3: पागल है कि दिमाग खराब है क्या? पैसे देने पड़ेंगे.
4: अब तो फंस गए सर.
3: हेलो
5: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ. सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है.
3: उसके पैसे को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
5: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे. आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
3: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
5: जी. अरे सर, रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर. मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: मॉर्गेज ढूंढने या रजिस्ट्रेशन और क्लोजिंग में खा रहे हैं मात? या प्राइसिंग और ऑफर में कोई बता नहीं रहा है हेल्प का हाथ?
9: No worries. सुनिए रियल एस्टेट की बात डील मेकर आदर्श के साथ. Rock the real estate field with Adarsh Lal. अगर real estate में आपकी interest है तो ये शो must है.
8: Real estate की बात डील मेकर आदर्श के साथ every alternate Thursday between 4 and 5 p.m. only on your favorite Radio Mirchi 92.7 पर.
10: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Beep Khao to Jano.
11: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
12: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
13: Tera kya hoga, Kalia?
14: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
13: Ab, mirchi kha.
15: Radio Mirchi, it's hot.

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और वैसे तो यार कितने सारे गाने बनते हैं, कितने सारे एल्बम्स बनते हैं, लेकिन कभी कभार एक ऐसा एल्बम आ जाता है ना जिसका हर एक गाना एक से बढ़कर एक होता है और आज भी उतना ही टाइमलेस है जितना तब जब रिलीज हुआ था तब था। और आज जिस एल्बम की बात हो रही है दैट इज नन अदर देन रॉक स्टार। जी हाँ, क्योंकि इस एल्बम ने एक ऐसा गाना दिया था हमें जो सिर्फ गाना नहीं था, एक रेबेलियन बन गया था। रॉक स्टार का सड्डा हक बना था हर यूथ का एक्सप्रेशन, क्योंकि इम्तियाज अली ने ना तब एआर रहमान से कहा था कि मुझे एक ऐसा गाना चाहिए जो जॉर्डन की आग को जला दे, और मोहित चौहान ने इसमें अपनी रॉक वॉइस का मैजिक छोड़ा था, और रणबीर कपूर की जो रॉ एनर्जी थी ना इसने इस गाने को कल्ट बना दिया था। वैसे तो यार ये गाना आज भी जब बजता है तो लगता है कि अंदर से कोई चिल्ला रहा है, मतलब मुझे भी कुछ कहना है, अपने दिल की भड़ास बाहर आ जाती है। तो अगर आपको भी ये गाना पसंद है और आपके भी दिल में इस गाने ने जगह बनाई है तो चलिए आज बजाते हैं सड्डा हक फ्रॉम द वन एंड ओनली एल्बम विच इज स्टिल टाइमलेस, रॉक स्टार बाय ए आर रहमान। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो विच इज दैट अदर एल्बम दैट यू एब्सोल्यूटली लव विच इज स्टिल टाइमलेस। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आर जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। तो फुल वॉल्यूम कीजिए क्योंकि सड़ा हक बचने ही वाला है राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन।
4: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
5: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
7: अब मिर्ची खा।
9: Radio Mirchi, it's hot.

की टाइम। एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और आज बात हो रही है एक ऐसे टाइमलेस एल्बम के बारे में जिसका यार हर एक गाना दिल को छू जाता है। और वो जो टाइमलेस एल्बम है दैट इज नन अदर देन रॉक स्टार बाय AR रहमान। और यार उस एल्बम का एक ऐसा गाना है जो सिर्फ एक लॉस्ट सोल के लिए नहीं लेकिन हर उस इंसान के लिए है जो अपने घर को ढूंढ रहा है। इम्तियाज अली ने गाया हुआ नादान परिंदे घर आ जा इस गाने को ना फिल्म का इमोशनल एंकर बनाया था। AR रहमान साहब ने इसमें सूफी और रॉक का एक ऐसा ब्लेंड दिया था कि ये जो गाना है जॉर्डन के सफर का टर्निंग पॉइंट बन गया था। और मोहित चौहान की आवाज उफ, एक दर्द जो सीधा दिल में घुस जाता है। तो यार ये गाना सुनते ही ना एक अजीब सा होम सिकनेस महसूस होता है, चाहे घर पास हो या दूर। तो अगर आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है तो चलिए आपके ही लिए आज प्ले कर रही हूँ नादान परिंदे घर आ जा। और मुझे जरूर बताना कि रॉक स्टार का ये गाना क्या आपका भी फेवरेट है। Tell me on Insta at RJ Mirchi Siddhi SIDDHI। लेकिन अगर और भी कोई गाना आपका फेवरेट है फ्रॉम द मूवी Rockstar, जल्दी से मुझे इंस्टा कीजिए। और तब तक के लिए Rockstar का नादान परिंदे घर आजा राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स ऑल।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें। मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर।
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
5: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
6: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत है, पर बच्चन एक ही होता है।
7: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
5: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
5: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

गरबा का मूड हो या ऑफिस का बोर्डम, दीप गुजराती स्नैक्स की बीट ही काफी है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और सूरती स्पेशल तीखा मिक्स भटानी कानी। एवरी बाइट में लगता है दैट यू आर डूइंग डांडिया एंड दैट टू विद फ्लेवर्स, स्पाइसी क्रंची और देसी फन, या जिसकी गूंज ना मिर्ची सिद्धी के स्टूडियो तक भी पहुंच जाती है। तो आज ही ट्राई कीजिए दीप गुजराती स्नैक्स, सूरत से आया फ्लेवर का फेस्टिवल, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM. Radio Mitri, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: It's 5 p.m. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
2: Sham Shandar. Let's go Nautanki. Have a funky time.
1: This hour is brought to you by Raj Jewels.
2: Sham Shandar. Let's go Nautanki. Have a funky time.
3: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और आज बातें हो रही है एक ऐसे एल्बम के बारे में जिसका यार हर एक गाना दिल को छू जाने वाला है। और आज का जो ये एल्बम है यार, ये अभी भी इतने सालों बाद भी टाइमलेस है। बात हो रही है रॉक स्टार एल्बम के बारे में, कंपोज बाय AR रहमान। और इस एल्बम में तो यार वैसे तो सारे गाने अमेजिंग है, लेकिन एक ऐसा गाना भी है जो सिर्फ सुकून ही नहीं देता, रूह तक को छू जाता है। निजामुद्दीन दरगाह में शूट हुआ कुन फाया कुन, ये जो गाना है ना, असली कव्वाल के साथ रिकॉर्ड किया गया था। AR रहमान ने खुद कहा था कि ये जो कंपोजिशन है वो बहुत ही डिवाइन है। और मोहित चौहान, AR रहमान और जावेद अली की ट्रिनिटी ने इस गाने को ना सोल थेरेपी बना दिया था। वैसे तो यार ये जो गाना है चल पड़ता है जब जिंदगी थोड़ी रुक जाए और हर बार दिल को हल्का कर जाता है। तो अगर आज की शाम दिल थोड़ा घबराया हुआ है या बस थोड़ा वक्त अपने लिए चाहिए ना, तो कुन फाया कुन ये जो गाना मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ वो सुन लेना। और मुझे जरूर बताना कि ऐसी कौन सी लाइन है इस गाने की जो आपको टच करती है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और रॉक स्टार का आपका फेवरेट गाना है वो कौन सा है वो भी मुझे जरूर बताना। और तब तक के लिए कुन फाया कुन ओनली ऑन मिर्ची। It's hot.
4: Rang reza, rang reza.

0: Milci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La viva la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Hello, Manoj ji, se baat kar sakta hu main?
2: Haan ji, bol raha hu Manoj.
3: Haan, Manoj ji, main Yadvar bol raha hu. Oil se ye petrol ki problem aapko bhi ho rahi hai kya?
2: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से तीन जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
3: अभी एक महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये एक महीने तक कम से कम।
2: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
3: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात अपने तक ही रखना। हाँ
2: बोलो।
3: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
2: कौन सा?
3: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
2: कच्चा? अच्छा।
3: हाँ, तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
2: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ?
3: वो पक्का हो जाएगा, मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
2: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
3: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
2: कुकर? हाँ कुकर तो है।
3: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो।
2: चार?
3: हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
2: अच्छा।
3: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
2: सोडा,
3: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
2: लहसुन? यार पेट्रोल बना रहा है या वो बना, खाना बना रहा है?
3: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
2: मतलब उसको पकाऊं?
3: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
2: कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा, रिस्क कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
3: या एक काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना है, पकाना नहीं है।
2: नहीं नहीं, कोई मैं रिस्क नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
3: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
2: चल जाएगी?
3: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
2: अबे कौन बोल रहा तू?
3: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है, घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
2: यार ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
10: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
11: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
12: I don't need to tell you, New Yorkers are paying more for everything. Rent, utilities, groceries, every single month. The office that's supposed to protect us? It's on the sidelines. I'm Raj Goyal. As an ACLU lawyer, I fought for the people against powerful interest every single day. Now I'm going to be your affordability watchdog. I'll take the pension fund out of the greedy hands of Wall Street and put it back into affordable housing. Holding utility companies accountable and auditing waste and fraud.
13: Raj Goyal, affordability watchdog for Comptroller.
14: Paid for by Raj Goyal for New York State Comptroller.

0: शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और चलिए आज की शाम में करते हैं थोड़ा रियल टॉक। जी हाँ यार, आजकल मार्केट ना हर वीक चेंज हो ही जा रहा है, कभी रेट्स ऊपर कभी नीचे, कभी सेंटिमेंट ही फ्लिप तो कभी इन्फ्लेशन इतना ज्यादा कि यार ड्राइव टाइम भी ना थोड़ा सा दर्द दे रहा है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता है कि मार्केट क्या कर रहा है, बल्कि ये होता है कि यार मेरा बजट क्या क्या अलाउ कर सकता है। स्पेशली अगर होम बाइंग के बारे में बात करूँ ना, तो स्मार्ट होम बाइंग ट्रेंड फॉलो करने से नहीं बल्कि नंबर्स को ढंग से समझने से होती है कि आप कितना कंफर्टेबली कोई भी नया घर अफोर्ड कर सकते हो और किस तरह प्लान कर सकते हो, स्पेशली ऐसे चेंजिंग सिचुएशन में भी। और इसी क्लैरिटी के लिए एक्सपर्ट एडवाइस देने के लिए आए हैं मेरे दोस्त बीच फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। तो चलिए ऐसे डायनामिक मार्केट में बजट को कैसे स्मार्टली प्लान करें, सुनते हैं बीच से। ओवर टू यू बीच।
1: गुड इवनिंग मिचेल, दिस इज योर फ्रेंड बीच फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। Hope you all had a good day at work. Feels like summer. If you can stay indoors, nothing like it. And the US market spared losses as rising bond yields maintain pressure. Mortgage rates just nudged up today. And hear what that means for you. Rates are still volatile, but don't let that spook you. These daily shifts are normal, like the tide. They rise and fall with economic currents. Great time to get pre-approved before listing search. If you've been waiting for the right moment, this could be it. Call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage, buying your dream home. 732-339-3155. Looking at the mortgage rates today, the 30-year fixed mortgage rate, 6.5%. 20-year fixed mortgage rate, 6.25%. 15-year fixed mortgage rate, 5.75%. Friends, you can always visit our user-friendly website at www.lionmtg.com. It is lionmtg.com. Also, remember, listeners, mortgage underwriting criteria nationwide have eased over the past few years with a particular focus on qualification, such as debt-to-income ratios, loan-to-value, your most important credit scores. Now you can buy your dream home with as little as 1% down payment if you qualify. So once again, friends, don't forget, we are offering conventional loans. We offer great rates on jumbo loans. We also offer DSCR loans. And we also offer zero closing cost refinance option. So once again, friends, buying your dream home or refinancing, don't hesitate to call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. With that, drive safe, everybody. Have a wonderful evening. Thank you very much. Bye-bye.
2: This mortgage update is brought to you by Lion Mortgage.

0: It's 5:30 PM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Shardar. Let's do not donkey have a funky time.
2: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और आज हमारी बातें हो रही है एक ऐसे एल्बम के बारे में जिसका यार हर एक गाना दिल में ना एक अलग ही जगह कर देता है और आज भी उतना ही रेलेवेंट है, उतना ही अमेजिंग है। रॉक स्टार एल्बम की बातें हो रही है, कंपोज बाय AR रहमान और आज की जो सॉन्ग रिक्वेस्ट है दैट इज फ्रॉम अमित द्विवेदी जो कि रहते हैं एडिसन में और उनको फिर से उड़ चला जो कि रॉक स्टार का गाना है वो बहुत ही ज्यादा पसंद है क्योंकि उनका कहना है कि ये गाना सिर्फ एक ट्यून नहीं है, एक फ्लाइट है अपने ख्यालों की, अपने आजादी की और अपने सपनों की। और मेरा भी यही मानना है क्योंकि इम्तियाज अली के रॉकस्टार एल्बम का ये जो ट्रैक है, मोहित चौहान की मैजिकल आवाज और AR रहमान की एक्सपेरिमेंटल कंपोजिशन का एक बहुत ही रेयर जेम है। मतलब लिरिक्स इरशाद कामिल जी की है और ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी का ना खुला आसमान ही उन्होंने लिख दिया हो। मूवी में ये जब मोमेंट था जब जॉर्डन के लिए बहुत ही टर्निंग पॉइंट था क्योंकि तब वो अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर म्यूजिक और सफर की दुनिया में उड़ चले थे और इसमें ना कोई फिक्स्ड बीट नहीं है, एक बहुत ही फ्री फ्लो मेलोडी है गाना, बिल्कुल लाइफ की तरह अनप्रेडिक्टेबल। तो मेरे लिए फिर से उड़ चला एक ऐसा ट्रैक है जो बस कहीं पर भी आप सुन सकते हो, चाहे रोड ट्रिप में हो चाहे ट्रेन में हो, हेडफोन्स लगाते ही वर्ल्ड से ना डिस्कनेक्ट कर देता है ये गाना। और अगर आपको भी यही लगता है तो चलिए आपको वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट करते हैं विद दिस सॉन्ग रिक्वेस्टेड बाय अमित द्विवेदी जी। और दोस्तों आपको भी अगर कोई ऐसा एल्बम पसंद है जिसके सारे गाने आपके दिल के बहुत ही करीब है तो मुझे जरूर बताइए। टेल मी ऑन इंस्टाट RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI और तब तक के लिए रॉक स्टार का फिर से उठ चला राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
0: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

ऑफिस के डेडलाइन से थोड़ा काम डाउन होना चाहते हो तो बस एक चम्मच दीप दही काफी है। शमशानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और यार, ऑफिस के डेडलाइंस, बॉस की बड़बड़ से दिमाग अगर गर्म हो चुका है तो उसे ही कूल करने के लिए दीप दही के साथ एक ठंडी ठंडी लस्सी हो जाए। बॉस की बड़बड़ से दिमाग अगर गर्म हो चुका है तो उसे ही कूल करने के लिए दीप दही के साथ एक ठंडी ठंडी लस्सी हो जाए, क्योंकि

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shandar, let's do Nautanki, have a funky time.
2: एक ऐसा एल्बम जिसके हर एक गाने ने दिल में अलग ही जगह कर दी है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और आज बात हो रही है एक ऐसे एल्बम के बारे में जिसका यार हर एक गाना बहुत ही खूबसूरत है और आपके जो सॉन्ग रिक्वेस्ट आई है फ्रॉम दैट एल्बम वो आज मैं प्ले करने वाली हूँ। जी हाँ, बात हो रही है रॉक स्टार एल्बम की कंपोज्ड बाय AR रहमान और ये जो सॉन्ग रिक्वेस्ट है दैट इज फ्रॉम मोहिनी सांगले हु इज फ्रॉम एडिसन। और मोहिनी कहती है कि यार इस एल्बम का तुम हो जो ये गाना है यार एक ऐसा रोमांटिक गाना है ना जो प्यार भी याद दिलाता है और इसकी खुशबू भी ले आता है। मतलब वो कहते हैं ना कि जब प्यार की यादें इसे दिल में जगह कर देती है, घर कर देती है ना, तब ये गाना याद आता है। और तुम हो को सुनते ही ना रणबीर और नरगिस की वो साइलेंट केमिस्ट्री याद आ जाती है। इरशाद कामिल के लिरिक्स द अल्ट्रा पर्सनल जैसे किसी डायरी से निकले हो और AR रहमान ने इसमें मोहित चौहान और सुजैन डिमेलो की डुएट फील यूज करके यार ये गाना बहुत लॉन्गिंग और लव के लिए बना दिया। तो चलिए ये गाना चलाते हैं आज स्पेशली मोहिनी जी के लिए जिनकी यार पुरानी यादें इस गाने से ताजा हो चुकी है। अगर आपकी भी हुई है तो जरूर बताना कि आपको ये गाना कैसा लगता है। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और अगर ऐसा भी कोई एल्बम है जिसका हर एक गाना आपको बहुत पसंद है उस एल्बम के बारे में जरूर बताना, उसके हर एक गाने हम यहीं पे प्ले करेंगे। और कहां, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iscabana, Puscabana, Sacabana, Rabana, Burga, Burga, la Virtua, la Burga, Milci, Burga.
2: Hello.
3: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ।
2: हाँ जी, हेलो।
3: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है, सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है।
3: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 3535/14A फर्स्ट फ्लोर नगर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें, सिक्योरिटी की वजह से आपका सनशाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
2: सिक्योरिटी के लिए सनशाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
2: मेरा सनशाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला,
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
3: मैडम, ये इंटरनेट का कनेक्शन है। आप मेरे को क्यों बता रहे हो, ब्लड ग्रुप बताइए।
2: बी पॉजिटिव, दो दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा। और ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
3: तो मैं आपको, अरे मैडम
2: आप सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल
3: सुमन जी आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हमें? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
2: यार
3: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है, आप अगर मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
4: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया, रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है। अब आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं,
3: दोबारा कॉल करेंगे। आप क्या वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: दिस गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स, किंगडम ऑफ ज्वेल्स, वेयर ट्रेडिशन मीट स्टाइल।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
9: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
7: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
10: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
11: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
12: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
11: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
12: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
11: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलिन।
13: तेरा क्या होगा कालिया?
14: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
13: अब मिर्ची खा।
15: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्तों, कभी कभी लाइफ के छोटे मोमेंट्स ही ना सबसे फिल्मी होते हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जैसे कि कार में बैठते ही अचानक से तुम से ही बच जाए या फिर ड्राइव के वक्त यूं ही चला चल राही लग जाए, बस वो मोमेंट ही काफी होता है पूरा मूड चेंज करने के लिए। क्योंकि यार बॉलीवुड हमें यही तो सिखाता है, हर दिन में एक छोटा सा सीन ऐसा जरूर होता है, बस उसे नोटिस करना पड़ता है। तो आज का सवाल बहुत ही सिंपल है, आपके दिन का ऐसा कौन सा मोमेंट था जो थोड़ा सा फिल्मी था? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल मेरे दिल के फिल्मी मोमेंट के लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Are you a South Asian parent of a child with disabilities or special needs looking to connect with similar families? Reach out to SKN Foundation's SCOPE program for their parent support group, educational empowerment programs, IEP consultations, job skills training for teens, and inclusive events year-round.
3: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
4: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
6: Oak Tree Road लो बेस्ट डायमंड ज्वेलरी कोसम सर्च इस्तुन्नर कृष्णा ज्वेलर्स मी एक्सक्लूसिव डायमंड स्टोर।
7: टॉप क्वालिटी नेचुरल सर्टिफाइड डायमंड्स, GIA सॉलिटेयर्स, नेकलेसेस, रिंग्स, मरियू स्टनिंग पेंडेंट्स, कृष्णा ज्वेलर्स, Oak Tree Road, Ezelin।
8: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
9: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
8: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
10: एक ही होता है।
8: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: It's 6:30 PM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Shandar. Let's do not donkey have a funky time.
2: दोस्तों, कभी कभी हवा और लाइट ऐसी होती है ना कि लगता है कि सब कुछ सिनेमैटिक हो रहा है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और उसी ड्रीमी वाइब के लिए परफेक्ट गाना है सूरज हुआ मध्यम, शाहरुख खान और काजोल का गोल्डन डेजर्ट बैकड्रॉप, स्लो मोशन रोमांस और लिरिक्स जो एक अलग ही दुनिया क्रिएट करते हैं, जैसे मौसम ना रियलिटी से थोड़ा ब्रेक दे रहा हो। तो दोस्तों, आप भी बताओ कि आपका ड्रीमी वेदर सॉन्ग कौन सा है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल ये ड्रीमी सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

संगीत ने बना दी एक अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और कुछ जोड़ियां स्क्रीन पर नहीं सीधा दिल पर लिख जाती है, और ऐसी ही एक जोड़ी है अलका याग्निक और सोनू निगम की। और उनका गाना तुम ही देखो ना फ्रॉम द मूवी कभी अलविदा ना कहना, वो इमोशंस लेकर आता है जो हम बोल नहीं पाते, बस महसूस करते हैं। अब सोनू निगम की आवाज जैसे दिल की कन्फेशन, और अलका जी की आवाज जैसे उस कन्फेशन को समझने वाली खामोशी। और स्क्रीन पर शाहरुख खान और रानी मुखर्जी की आंखों में वही अनसेड कहानी, उफ। तो चलिए शाम को थोड़ा फील करते हैं उन इमोशंस के साथ, और आप भी मुझे बता सकते हो कि कौन सा सोनू निगम और अलका याग्निक डुओ का आपका फेवरेट गाना है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए तुम ही देखो ना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shandar, let's do Nautanki, have a funky time.
2: संगीत ने बना दी एक अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और अगर बॉलीवुड रोमांस का एक ड्रीमी वॉलपेपर होता तो बैकग्राउंड में ये गाना जरूर होता। सूरज हुआ मध्यम, कभी खुशी कभी गम का ये ट्रैक प्योर लव का स्लो मोशन वर्जन है। जी हाँ, सोनू निगम की स्मूथ वॉइस जैसे सनसेट और अलका जी की आवाज जैसे उस सनसेट के ब्यूटीफुल कलर्स, और स्क्रीन पर शाहरुख खान और काजोल, मतलब रोमांस का एकदम गोल्ड स्टैंडर्ड। तो जी हाँ, अगर आज मूड थोड़ा ड्रीमी है तो ये गाना बिल्कुल परफेक्ट है। और हाँ, आपके हिसाब से बॉलीवुड की सबसे ड्रीमी म्यूजिक जोड़ी कौन सी है? टेल मी ऑन इंस्टाट आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि यार बजाते उनके भी गाने यहाँ पर। फिलहाल आपके लिए सूरज हुआ मध्यम, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: सूरज

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana.
2: Rambana.
1: Murga, murga. La viva la murga.
2: Mirchi, murga.
3: ¿Aló? ¿Aló?
4: Sir, very good evening, man. Bank support.
3: Bolia?
4: Sir, I'm so sorry, sir, but... सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
3: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं, क्या
4: बात है सर, आप तो सारे पूरा बता रहे
3: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
4: सर आपने उसमें से अभी तो कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
3: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
4: आई एम सो सॉरी सर, ऐसी कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
3: नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
4: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
3: नहीं, मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
4: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
3: पागल पागल है,
4: आप तो देने पड़ेंगे सर.
3: हेलो.
4: अब तो फंस गए देने पड़ेंगे.
3: कौन बोल रहा है? विपिन?
4: नहीं सर, से बोल तो आप तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
3: पागल है कि दिमाग खराब है क्या? पैसे देने पड़ेंगे,
4: अब तो फंस गए सर.
3: हेलो
5: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ. सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है.
3: उसके पैसे को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
5: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे. आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
3: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं
5: जी? अरे सर, रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर. मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है.
10: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
9: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
11: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
12: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
13: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
12: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
13: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
12: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.
14: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
15: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
16: तेरा क्या होगा कालिया?
17: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
16: अब मिर्ची खा.
18: Radio Mirchi, it's hot.

संगीत ने बना दी एक अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सिंपल होते हैं पर सीधा दिल को टच कर जाते हैं। रिफ्यूजी का पंछी नदियां पवन के झोंके, ये एक ऐसा गाना है जो सफर जैसा लगता है, क्योंकि उसमें सोनू निगम की आवाज़ यानी बिल्कुल फ्री, बिल्कुल रॉ, जैसे खुला आसमान, और अलका जी की आवाज़ यानी सॉफ्ट सूदिंग, जैसे हल्की सी हवा, और स्क्रीन पर अभिषेक बच्चन और करीना कपूर की इनोसेंस और ये मेलोडी यानी प्योर मैजिक। तो चलिए थोड़ा सा सिंपल प्यार फील करते हैं सोनू निगम और अलका जी की इस अनोखी जोड़ी के साथ फॉर दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग। लेकिन दोस्तों आप ही बताना कि कौन सा गाना है जो आपको इंस्टेंटली काम कर देता है, स्पेशली इस पावरफुल म्यूजिकल डुओ का, सोनू निगम जी का और अलका याग्निक जी का। तो चलिए फिलहाल पंछी नदियां सुनते हैं राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: जय गुरुदेव गायत्री चेतना सेंटर पिस्कारोवे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ। शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव।
3: Your voice, your ideas, your future. Sujit Singh is running for Congress in New Jersey 12 to bring your voice, your ideas and your concerns to Washington and turn them into real legislative action for our district. It is your opportunity to shape the priorities that matter to our families and communities. Visit singforcongress.org and share your priorities and wishes today. Remember, your voice, your future. Sujit Singh for Congress. Paid for by Sujit Singh for Congress.
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
4: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन। Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
7: Listener mein back to back gana sunega. Back to back gana sunega.
8: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

संगीत ने बना दिए एक अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और वैसे तो बॉलीवुड में इतनी सारी जोड़ियां बनती है, लेकिन बॉलीवुड म्यूजिक में हमारी भी बहुत सारी ऐसी फेवरेट जोड़ियां हैं जो यार इतने धमाकेदार गाने हमें दे चुके हैं। और उन्हीं में से एक है सोनू निगम और अलका याग्निक जी की जोड़ी। और यार उनके कुछ गाने सिर्फ रोमांटिक ही नहीं, इंटेंस और फिल्मी और फुल पैशन वाले भी है, जैसे कि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी का, बनके तेरा जोगी। ये गाना प्योर जुनून वाला, प्यार वाला गाना है ये। जी हाँ, सोनू निगम की पावरफुल आवाज़, जैसे कि फुल ऑन कमिटमेंट, और अलका याग्निक जी की आवाज़ उस कमिटमेंट को सॉफ्टनेस देती हुई। और जब स्क्रीन पे शाहरुख खान और जूही चावला का प्लेफुल रोमांस दिखता है तो यार ये गाना ना और भी ज़्यादा अलाइव हो जाता है। तो अगर आपको भी वो ओल्ड स्कूल बॉलीवुड वाला इंटेंस प्यार पसंद है तो मुझे ज़रूर बताइए कि कौन सा गाना आपका फुल्ली फिल्मी लव डिफाइन करता है। टेल मी ऑन इंस्टाट आर मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल बजाते हैं बॉलीवुड म्यूजिक के पावरफुल कपल का, यानी सोनू निगम जी का और अलका याग्निक जी का, बनके तेरा जोगी, राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Your voice, your ideas, your future. Sujit Singh is running for Congress in New Jersey 12 to bring your voice, your ideas and your concerns to Washington and turn them into real legislative action for our district. It is your opportunity to shape the priorities that matter to our families and communities. Visit singforcongress.org and share your priorities and wishes today. Remember, your voice, your future. Sujit Singh for Congress. Paid for by Sujit Singh for Congress.
0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
4: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
5: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
6: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे

निल्सन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और देखते ही देखते ये शाम भी ढलने आ चुकी है और हमारे भी जाने का वक्त आ चुका है। लेकिन दोस्तों, आपके साथ शाम शानदार में अलग अलग धमाकेदार गाने बजाने का जो मज़ा है, उसे मैं मिस नहीं करने वाली। इसलिए कल फिर से आपसे मिलने आऊँगी फ्रॉम 4 to 8 PM EST। और आज के लिए आप कहीं ना जाइए, क्योंकि यार प्यार के जो अनोखे फंडे हैं वो आपको समझाने आ रही है रोशी। तो कहीं ना जाइए, जमे रहिए, बने रहिए राइट हियर ऑन मिर्ची। और आपकी जो सॉन्ग रिक्वेस्ट है वो मुझे सेंड करते रहिए ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल @RJMirchiSiddhi SIDDHI ओनली ऑन इंस्टा। और आपके लिए ये अगला तड़कता फड़कता गाना जाते जाते राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।